FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक शपथ 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया

0: जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रभु जी, आप तो कृपा के सागर हैं, आप हमें दर्शन दो।

0: हर पल हर क्षण भगवत नाम स्मरण तन के तमूरे में।
1: तन तंबूरा तार मन

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: जीवन में ईश्वर को ही महत्व देना चाहिए, संपत्ति को नहीं। भगवान कहते हैं कि तूने मुझे सजाया तो मैं तुझे सजा दूंगा, और मुझे नहीं सजाया तो तुझे सजा दूंगा, अर्थात दंड दूंगा। आज परमात्मा ने व्यक्ति को भौतिकवादी बनाकर भगवान को न सजाने की बहुत बड़ी सजा दी है। यदि इस सजा से मुक्त होना है तो सत्संग, हरि कीर्तन, वैराग्य और गुरु कृपा में से किसी मार्ग को अपनाकर अज्ञानता का विनाश करके भगवान के मर्म का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है और सांसारिक भौतिकवादी सजा से मुक्ति पाई जा सकती है। भौतिक बात में फंसकर मनुष्य के हृदय की लालसा का कोई अंत नहीं हो सकता, जब तक कि सत्संगति से वो अपनी तृष्णा को जीतने का प्रयत्न ना करे। मनुष्य प्रेम, दया, दान, परोपकार आदि के द्वारा तृष्णा को जीतने में सफल हो जाता है, यही उसके जीवन की सार्थकता है। मनुष्य को परमात्मा का हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सत्संग, प्रेम, भक्ति, दया का मार्ग चुनकर परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे कि प्रसन्नता के वशीभूत होकर परमात्मा स्वयं अपने भक्त का हाथ पकड़े। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जीवन का सुंदर मंत्र ये है कि यदि कुछ पाना चाहते हो तो हृदय में ये धारण कर लो कि जिसके पास जो कुछ होता है वो वही देता है। भगवान की लीला का स्मरण करो, भगवान की रचना का स्मरण करो, भगवान की रचना से प्रेम करो। मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा के दर्शन करें या ना करें, किंतु भगवान की विभूति के दर्शन अवश्य करें। शास्त्रार्थ के आधार पर संत कहते हैं कि गाय, नारी और निर्दोष बालक पर अत्याचार कभी न करें। जो पुरुष इन पर अत्याचार करता है उसके घर में कभी सुख, संपत्ति और शांति का वास नहीं हो सकता है। दुष्ट संगति अमंगलकारी और अनिष्टकारी होती है, और सत्संगति ज्ञान का प्रकाश देती है। वह प्रकाश मन की हिंसा और तृष्णा को नष्ट कर देता है। निर्मल स्वच्छ हृदय में परमात्मा अपना भक्ति भाव समाहित कर देते हैं, यही मानव जीवन की सार्थकता है। सत्संगति से सत्संग का अवसर मिलता है, और सत्संग एक ऐसी चीज है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ये न कभी बदला है और न बदलेगा। सत्संग में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। सभी भगवान के भक्त हैं और भक्त से भगवान प्रेम करते हैं। भगवान तो दाता है, उसके द्वार से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं जाता है।

0: भगवान एक है, वही राम है, वही रहीम है, वही खुदा है और वही ईसा है। उनके अनेक नाम हैं। ईश्वर को पहचानने में इंसान की सोच का फर्क है। जब ये फर्क व्यक्ति पर सवार होता है तो उसे हर चीज में भगवान के रूप में और नाम में भी फर्क नजर आने लगता है। भगवान चाहते हैं मनुष्य उसकी भक्ति करे या ना करे, पूजा पाठ करे अथवा ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इंसान को अच्छे कार्यों के लिए अवश्य समय निकालना चाहिए। इंसान को अपने मोक्ष का साधन जुटाना चाहिए तथा मेहनत की कमाई खानी चाहिए। कलयुग में असत्य और पाप का अधिक प्रभाव है, इससे बचना चाहिए। मेहनत की कमाई में जितना आनंद और शांति मिलती है वो गलत कार्य से कभी नहीं मिल सकती।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम में सत्संग पर विचार। आलेख खरक सिंह छोकर और वाचन स्वर था राखी कटारा का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था अनुराधा पौडवाल और साथियों ने FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी मेघदूत और प्रस्तुति होगी टीएन शर्मा की। साथ ही आप आनंद ले सकेंगे ब्रजलोक गीतों का। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि कार्यक्रम में कुछ फिल्म संगीत के नगमों का आनंद आप लेंगे 8:30 पर। साथ ही 9:00 हमारे श्रोता सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। आज का विषय रहेगा हेपेटाइटिस कारण लक्षण और बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर संजीव कुमार जैन और आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा और 9:45 पर आप सुनेंगे हमारा विशेष काव्यात्मक संवाद कार्यक्रम पर्यावरण एवं जीवन मूल्य। वार्ताकार डॉक्टर कृष्णावतार उमराव विवेक निधि और आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। 11:00 हमारे श्रोता आनंद लेंगे फरवासी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। 12:00 हमारे श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज कलाकार रहेंगे दामोदर शर्मा। पर कार्यक्रम होगा बहनों का वनिता लोक कार्यक्रम। आज चर्चा का विषय रहेगा एक पेड़ माँ के नाम। साथ ही आप सुनेंगे बदलती जीवन शैली और महिलाओं का स्वास्थ्य। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता सुखी दांपत्य जीवन के लिए जरूरी है आपसी विश्वास। वार्ताकार रहेंगी अंजू सूद। साथ ही 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

कुछ देर बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में उपयोग, और विशेषज्ञ होंगे विजय सिंह नौलखा। साथ ही 7 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का। 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। बजकर 31 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आज सुनेंगे

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: हम नीम का कृषि एवं पौध संरक्षण में उपयोग विषय पर चर्चा करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों को भी अब इस बात का एहसास होने लगा है कि रासायनिक कीटनाशक जरूरी नहीं है, क्योंकि भूमि विषैली हो चुकी है, भूजल प्रदूषित हो चुका है, पर्यावरण दूषित हो चुका है, लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में डाल दिया गया है तथा हजारों खेतों व कृषि मजदूरों के प्राण। हरित क्रांति, जिसमें रसायनों के प्रयोग पर बहुत अधिक जोर दिया गया, रसायनों के उपयोग ने समस्याओं को खत्म करने की जगह पर ज्यादा बढ़ा दिया है। कीटनाशकों ने कीट की कई प्रजातियों में परिवर्तन लाकर उन्हें जटिल तथा अधिक खतरनाक बना दिया है। जैविक कृषि क्षेत्र में नीम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। घरेलू कृषि रसायनों और पोषक तत्वों के रूप में नीम का प्रयोग होता आ रहा है। क्योंकि इसमें हानिकारक और जैविक रूप से अपघटित होने वाले तत्व मौजूद हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान से यह भी ज्ञात हुआ है कि नीम का सत कीड़ों की लगभग 400 प्रजातियों के लिए हानिकारक प्रभाव रखता है। रसायनों के प्रयोग से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में कृत्रिम रसायनों के प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है। इस दशा में नीम का प्रयोग प्रभावी जैविक रसायन के रूप में उपयोगी होता जा रहा है। नीम भारत का प्राचीनतम औषधीय वृक्ष है। सदियों से भारतीय किसान अपनी फसल और अनाज की सुरक्षा नीम की पत्ती और बीजों से करते आ रहे हैं। अभी भी ग्रामीण महिलाएं अनाज और ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा नीम की पत्तियों को सुखाकर उनकी एक परत नीचे बिछाकर करती हैं। नीम की पत्तियों, छाल एवं निवोली में जटिल यौगिक पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कि हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में प्रभावी व सक्षम है। नीम कीट के जीवन पर अनेक तरह से प्रभाव डालता है। वह हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है, हानिकारक कीटों को फसल को खाने से रोक देता है, हानिकारक कीटों के अंडों को नष्ट करता है, फसल पर अंडे देने से रोकता है, हानिकारक कीटों की वृद्धि को प्रभावित करता है तथा हानिकारक कीटों के वयस्कों में प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। नीम

0: के अनेक व्यावसायिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। इनका प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसमें नीम का सत् कितने प्रतिशत है, उसी पर इसका प्रभाव निर्भर करता है। अब बात आती है इसके प्रयोग करने की विधि पर। नीम की निमोली का सत् बनाने के लिए 6 महीने से ज्यादा पुराने बीजों को नहीं लेना चाहिए। बीजों को तोड़कर 500 ग्राम निमोली निकाल लेना चाहिए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से कूट कर कपड़े की पोटली बांधकर 5 लीटर पानी में डुबो देना चाहिए। रात भर रहने के बाद इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर निचोड़ लेना चाहिए। इसके बाद इस पानी को 100 लीटर पानी में मिलाकर उसमें 1% सस्ता साबुन थोड़ी मात्रा में मिलाकर फसलों तथा सब्जियों में लगने वाले रोगों और कीटों पर छिड़काव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोली के अतिरिक्त नीम की पत्ती को भी कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम की पत्ती से सत बनाने के लिए 5 लीटर पानी में 1 किलो नीम की पत्तियों को डालकर पूरी रात छोड़ दें। फिर सुबह पत्ती को पीसकर पानी में मिलाकर छान लें। इसमें 80 किलोग्राम पत्तियां 1 हेक्टेयर खेत के लिए आवश्यक होती हैं। इसी प्रकार खली का इस्तेमाल भी कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम की खली से सत बनाने के लिए 100 ग्राम खली 1 लीटर पानी के हिसाब से सत बनाना चाहिए। नीम के तेल का इस्तेमाल भी कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर तेल का होना आवश्यक है। 1 एकड़ भूमि के लिए 60 लीटर घोल की आवश्यकता होती है। एक छिड़काव सुबह जल्दी या शाम को करें, दूसरा छिड़काव हर 10 दिन के अंतराल पर करें। छिड़काव के घोल में थोड़ी मात्रा में साबुन अवश्य मिला रहना चाहिए, इससे छिड़काव में आसानी होती है। भंडारण में भी नीम की पत्तियों का उपयोग कीटों को रोकने में कारगर सिद्ध हुआ है। नीम का प्रयोग यूरिया की कोटिंग के रूप में धान की फसल में सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें यह नाइट्रोजन को अस्थिर करने वाले हार्मोन तंत्र को प्रभावित करता है, जबकि कृत्रिम रसायन कीटों के पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसलिए नीम के प्रयोग से कीटों की अगली पीढ़ी में प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं हो पाती। कीटनाशक के रूप में नीम का प्रयोग सर्वदा उचित है, क्योंकि यह लाभदायक कीटों के लिए सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग समेकित कीट नियंत्रण में एक अव्यय के रूप में किया जा सकता है। यह सस्ता है, सुरक्षित है और आसानी से उपलब्ध होता है तथा इसके प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है।
1: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था नीम का कृषि एवं पौ संरक्षण में उपयोग और विशेषज्ञ थे विजय सिंह नौलखा। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्ने पादोन द्विवादने सह 7,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सह जनसभामपि संबोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालंधर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 7,74,500 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत्। अथ फादर।

और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा। का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कभी कभी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों को, फिल्म का नाम था द ट्रेन। और आइए सुनते हैं मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम है श्री 420।

हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म महल के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकू नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी IT डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने घोषित किए NEET UG 2026 के परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से

0: कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजना भी शामिल है।
2: प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन सहित 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने सहित कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
3: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यवहारिक, निवेशक अनुकूल और रोजगारोन्मुख बनाया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने कल एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर कल सुबह ही दोनों से लगभग एक घंटे की पूछताछ भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल वाराणसी में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया।
4: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया और ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा और गांव का विकास भी होगा।
5: विकसित भारत जी रामजी है, इसमें पीएम गति सती के नाम का एक पोर्टल है, जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनाओ, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गतिशक्ति का मतलब है कि अगर आपने गांव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।

0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
1: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में 1 घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अपने गांव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं यह आपके ऊपर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम बीती रात घोषित कर दिए। परीक्षा में 11,21,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एनटीए के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में 58% से अधिक महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। 21 जून को आयोजित इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
2: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जलस्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी।
0: मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषित किए नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
5: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: अब प्रस्तुत हो है हमारो ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की या पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। और आज आपको सबसे पहले सुनमा में भी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी मेघदूत या के प्रस्तुत करता है TN शर्मा। तो भैया आनंद लियो या नौटंकी को।

0: आपने सुनी बी आजाद मथुरावी की लिखी नौटंकी मेघदूत। इसमें भाग लिया था कमलेश लता आर्य, गणपत लाल, भैरव सिंह ब्रजवासी और अमर ने। वादक कलाकार थे नीलेश कुमार, अत्तन खां, बाबू खां और कमल किशोर शर्मा। प्रस्तुति TN शर्मा की थी।
1: यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
4: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

0: जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहेब और श्री अनंतपुर साहेब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है।

0: हैं। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सब

0: फल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10-coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity. electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. The hydrogen facility has been established at Jind to enable safe, efficient and reliable

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: और आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में ये कार्यक्रम का पहला गीत।

अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म जानवर में। और आइए सुनते हैं आशा भोसले, अमित कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का।

हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

मनहर उदास, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म पूरब और पश्चिम में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: अक्षय भोसले के गाए फिल्म आए दिन बाहर के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता। विषय है हेपेटाइटिस कारण लक्षण और बचाव। वार्ता कर रहे डॉक्टर संजीव कुमार जैन और आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से किसी ऐसे विषय पर जानकारी आपको दिलवाते हैं जिससे हम दिन प्रतिदिन की जो जीवनचर्या है उसमें दो चार होते रहते हैं या कहें कि प्रभावित होते रहते हैं। जब भी बरसात का मौसम होता है तो कई बार जो खान पान की समस्या है, कई बार जो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो एक समसामयिक तौर पर होती हैं, हालाँकि वो बाकी के समय में भी आती हैं, तो इसमें एक पीलिया जो है वो भी एक समस्या है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो हेपेटाइटिस के बारे में करते हैं। उसमें सामान्यतः पीलिया को भी कई बार हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये हेपेटाइटिस क्या है, क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण है और एक डॉक्टर की सलाह के हिसाब से उसका क्या निदान हो सकता है, वो आज हमारी चर्चा का विषय है। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार जैन साहब, जो सौसैया अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
4: तो हेपेटाइटिस जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, लोग चर्चा करते हुए दिखते हैं, लेकिन जानकारी का भी उतना अभाव नहीं है, जानकारी का इतना भी प्रचार और प्रसार नहीं है जिससे वास्तव में ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है जिससे हम दो चार होते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि ये जो हेपेटाइटिस ही बीमारी है ये क्या है और इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, किस तरह फैलती है, किस तरह से हमारे संपर्क में आती है।
5: हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि लीवर या यकृत को इन्फ्लेमेशन होना, मतलब ये कई कारणों से हो सकता है जिसमें कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी और डेल्टा हेपेटाइटिस भी है। सेकंड, कुछ बीमारियां हेपेटाइटिस की जो कि वायरल नहीं होती हैं और वो हमारे खान पान की वजह से या किसी अल्कोहल लेने की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकती है। कभी कभी हेपेटाइटिस जो है ड्रग के इंड्यूस भी हो सकती है। और कॉमनली हेपेटाइटिस का जो शब्द है वो हम लोग हेपेटाइटिस ए या बी सी इनसे कहते हैं, जो कि वायरल डिसीज होती है उसके लिए हम लोग कहते हैं। इसमें कि जो लीवर होता है

0: वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, वो जो अर्ली स्टेज को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं।
1: तो सामान्यतः जिसको लोग पहले पीलिया करके मानते थे वो है हेपेटाइटिस ए है, उसमें जो
0: हाँ
1: सामान्यतः खान पान या गंदे पानी से, गंदे खाने से या
0: हाँ
1: इस तरह से फैलती है उसमें।
0: हाँ आपका कहना सही है, जो कि हम लोग हेपेटाइटिस ए बोलते हैं वो इट इज ए ओरोफिकल रूट, मतलब खाने पीने की वजह से फैलता है, और गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में ऐसी चीज़ों के दूषित पानी पीने से, दूषित खाना पीना खाने से वायरल जो हेपेटाइटिस ए है, जो वायरल डिसीज है वो हो जाती है, जिसमें कि बाद में जॉइंटिस भी हो जाती है, और लापरवाही करने से कभी कभी पेशेंट के लिए घातक भी हो जाती है।
1: तो आजकल जो प्रचलन में आ रहा है कि ए का तो आपने बताया, लेकिन जो खतरनाक तरीका है इसका, जो एक मरीज को जहाँ अगर उसके प्रभावित है तो थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, जिसमें आगे के जो प्रकार है वो कैसे फैलता है, और उसमें जो सामान्य ए है उससे वो किस तरह अलग होता है, इसमें व्यक्ति को कब थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, और जाँच के जो तरीके हैं वो क्या है इसके।
0: हेपेटाइटिस जो बीमारी मैंने जैसे बताया कि ये सब वायरल डिसीज हैं, तो इसका प्रिवेंशन जो है बहुत आसान है, और इसके लिए जो एक तो हम लोग कहीं पे भी आजकल तो गवर्नमेंट ने इसका इम्यूनाइजेशन शुरू कर दिया है, जैसे कि डीपीटी का और पोलियो का और मिजल्स का होता था, उसका भी नेशनल प्रोग्राम में इसका इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम में आ गया है, जो कि खास तौर से हेपेटाइटिस बी के लिए हुआ है। तो हम लोग जन्म से ही इसका यदि वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो हम खास तौर से हेपेटाइटिस बी की बीमारी से बच सकते हैं,
1: जो ज्यादा घातक है।
0: जो जाके घातक है और जो कि बहुत कॉमन है, और होने को तो हेपेटाइटिस सी और डी और ई भी बहुत कॉमन है, मगर इसका इतना वैक्सीनेशन अभी नहीं है, मगर यदि हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अपने बच्चे के जन्म पर ही करा लेते हैं, तो हेपेटाइटिस बी की जो घातक बीमारी है जो कि जानलेवा हो सकती है, और कभी कभी पूरा लीवर डैमेज हो जाता है इससे, उससे हम लोग बच सकते हैं।
1: तो क्या जैसे अब जो बच्चे आ रहे हैं उनमें, तो चूंकि जैसा आपने बताया कि नेशनल जो हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम है उसमें इसको शामिल किया गया है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, क्या जिनकी उम्र अब थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, वो बचपन उनका नहीं है, तो क्या वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो लोग भी लगवा सकते हैं इसको।
0: हाँ बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी आप किसी भी स्टेज में लगा सकते हैं, खास तौर से जो इस प्रोफेशन में है, क्योंकि ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन खून से खून में फैलता है, सेकंड ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड भी है, और तीसरा ये जो कॉमनली मेल टू मेल सेक्स जो होमोसेक्स होता है उसमें भी बहुत कॉमन है, तो जो कि जो जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, इसमें एज का कोई बार नहीं है।
1: तो उनको भी इस जो है इससे बच सकते हैं उसमें।
0: सकते हैं।
1: अब डॉक्टर साहब ये आता है कि जैसे लिवर प्रभावित होता है इसमें, चाहे कोई भी हो, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, जो मुख्य प्रभावित होने वाला अंग वो लिवर है हमारे, तो
0: लिवर है।
1: लिवर के प्रभावित होने से जो खतरा है वो कितना बढ़ता है, सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वो क्या आते हैं व्यक्ति को, मान लो अगर किसी भी ए बी सी से संक्रमित है, सबसे पहले जो लक्षण उभर के आएंगे उसको जो लगेगा वो क्या महसूस होगा उसमें, वो कैसे पता लगाए कि मैं इस उसकी चपेट में आ गया हूँ इसमें।
0: हेपेटाइटिस के जो मुख्य लक्षण हैं वो मरीज को हल्का हल्का बुखार रहना, मरीज के ऊपर के दाहिने हिस्से में पेट में दर्द रहना, तथा भूख बिल्कुल खत्म हो जाना। बाद में वो मरीज की कंप्लेंट ये भी हो जाती है कि मेरा पेशाब पीले रंग का आ रहा है, और फिर और लेट स्टेज में आंखों में पीलापन आ जाता है। तो इन लक्षणों में यदि होता है तो वो तुरंत ही किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जाँच तुरंत कराए।
1: मतलब इस तरह से आ रहा है, जो शुरुआत में जो पीलिया के जो लक्षण होते थे वो अगर आपको हो रहे हैं तो फिर आप सावधान हो, तो इसका पता जो है ब्लड टेस्ट से ही पता लगेगा इसमें।
0: हाँ बिल्कुल, इसका हेपेटाइटिस का जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट कराने से मालूम पड़ जाता है। सेकंड क्या है कि यदि हम लोग पेशेंट को यदि कोई जांच की सुविधा नहीं है और अल्ट्रासाउंड भी हमारे पास में नहीं है, तो मरीज को हम लोग क्लिनिकली एग्जामिनेशन करके भी हम बता सकते हैं कि भैया इसको हेपेटाइटिस हो गई है या इसको ये संक्रमित है, मगर ए है या बी या सी है इसका तो जांच ब्लड के टेस्ट से ही मालूम पड़ सकता है।
1: तो खतरनाक स्थिति कब होती है, व्यक्ति को कब ये ज्यादा होना चाहिए, जैसे मान लो कई बार किन्हीं कारणों से वो नहीं पता कर पाया कि मैं इसके इन्फेक्शन में हूँ, कई बार वो जांच नहीं करवा पाया, इलाज भी नहीं ले पाया, स्टेज उस स्थिति में आ गई कि जब बहुत दिन हो गए आपको इस चीज़ से प्रभावित होते हुए, तो वो स्थिति कब खतरनाक बनती है कि अब भाई अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, अब आपको बहुत मुश्किल आएगी, तो ऐसे हालात बनते हैं कभी?
0: बिल्कुल, आजकल मतलब जो भी मतलब हमारे मरीज लोग हैं या कोई हमारे

0: और सब भाई लोग हैं वो काम में इतने व्यस्त रहते हैं, वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम लोगों को यदि कुछ वीकनेस आ रही है बॉडी के अंदर, थकावट महसूस हो रही है और हमारे पेशाब पीला रंग का आ रहा है, वो काम में व्यस्त रहते हैं। और इस हेपेटाइटिस में रेस्ट बहुत जरूरी है, और यदि वो काम में व्यस्त रहेंगे तो धीमे धीमे दिन पीलिया बढ़ता जाएगा। जब आंखें बहुत पीली होती हैं और कोई दूसरा इंसान उसको टोकता है कि अरे आपकी तो आंखें पीली हो रही हैं, जब वो उसको ध्यान देता है, वो जो अर्ली स्टेज होते हैं वो उस पर ध्यान नहीं देता है, उस स्टेज में वो काफी डिले हो जाता है और लीवर हेपेटाइटिस से बाहर निकलकर इतना अधिक डैमेज हो जाता है कि जो कि घातक हो सकता है।
1: मतलब लिवर की जो रिकवरी है वो फिर मुश्किल हो
0: मुश्किल
1: जाती
0: हो
1: है।
0: जाती है।
1: तो लिवर अगर ज्यादा प्रभावित हो गया, कई बार कहे कि पूरा डैमेज हो गया, तो फिर क्या परेशानी आएगी उसमें? आपका जो जीवन जीना है वो कितना असंभव हो जाएगा उसमें?
0: यदि लीवर डैमेज हो जाएगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और इसके लिए मेडिसिन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यदि किसी को हेपेटाइटिस हो गई है, उसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर हम लोग अलग तरीके से करते हैं। मार्केट में इसके लिए कुछ वैक्सीन आई हैं, इंटरफेरॉन टाइप के आए हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी को, यदि उसका क्वांटिटी इतना वायरस का इतना बॉडी के अंदर नहीं है तो ये रिवर्सिबल भी है। यदि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई वायरस की तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है, वो एज ए कैरियर काम करता है। तो इसके लिए मार्केट में इंटरफेरॉन टाइप का होते हैं, जो कि एक प्रोटीन होता है जो कि वायरस के ही बनाया जाता है, वो बॉडी में हम लोग देते हैं, और यदि क्वांटिटी कम है वायरस की तो पेशेंट जो है फिर बाद में पूरी तरह ठीक हो सकता है, और यदि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और लीवर भी काफी डैमेज हो गया है, लीवर सिरोसिस की तरफ चला गया है, तो उस कंडीशन में फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। बहुत लेट स्टेज में क्या होता है, लीवर फेल्योर में चला जाता है, जहां की फिर बाद में लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है।
1: कई बार डॉक्टर साहब इस तरह की बीमारियों में लोग झाड़ फूंक में भी पड़ जाते हैं, देसी इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत कहे कि उसको सामान्य तौर पे लेते हैं, अगर पीलिया है तो ठीक हो ही जाएगा, जैसे आपने कहा कि भाई ए है तो शायद ऐसा हो भी जाता है,
0: हाँ
1: लेकिन कई बार अगर इन्फेक्शन दूसरी तरीके का है तो वो थोड़ा सा प्रोलोंग कर जाता है। तो ये व्यक्ति झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, देसी इलाज के चक्कर में ना पड़े, या कहें कि पैसे बचाने और थोड़े से काम के चक्कर में वो दिखाने भी नहीं आता, तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है इसमें?
0: हेपेटाइटिस ए जो है वो, जैसे मैंने बताया कि ये ओरोफिकल वाटर बॉर्न डिसीज है और खाने पीने के दूषित खाने से होता है। जब इसमें आंखों में पीलापन आ जाता है, यदि विटामिन सॉरी हेपेटाइटिस ए की वजह से है, तो मरीज जो है वो सीधे ही किसी झाड़ फूक के चक्कर में चला जाता है कि हम पीलिया झड़वा के आ रहे हैं, एक कहते हैं हम पीलिया झड़वा के आ रहे हैं। और ए हेपेटाइटिस ए होता है, यदि वो मरीज रेस्ट कर रहा है और खान पीने का ध्यान रख रहा है तो पीलिया तो अपने आप ही कम हो जाएगा, बिना किसी इलाज के कम हो जाएगा,
1: स्वतः ही ठीक हो जाएगा।
0: सोच हो जाएगा।
1: हाँ
0: अब होता क्या है कि कुछ झाड़फूंक वाले इसका फायदा उठाते हैं और तरह तरह की कुछ मालाएं देकर और या कुछ दवाई देकर उसको कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा पीलिया निकाल देंगे, कपड़े पीले हो जाएंगे, चावल पीले हो जाएंगे, या पेशाब से ये निकाल देंगे, जबकि वो की नॉर्मल ही प्रोसेस है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध ये है कि आप इसमें किसी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, और यदि ए है तो वो अपना सभी ठीक हो जाना है, यदि आप खान पान का ध्यान रखते हैं और रेस्ट रखते हैं। बाकी यदि बी और सी और अलग है तो उसमें तो फिर आपको पूरा ट्रीटमेंट ढंग से लेना ही पड़ेगा।
1: तो ये जो ट्रीटमेंट है इसका, मान लो किसी को ए की बजाय बी और सी में आ गया है, तो कितना लंबा इलाज चलता है इसमें? क्या कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है उसमें कुछ सुविधा है? जैसे टीकाकरण की बात आप कर रहे थे, बच्चा अगर नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, एज भी उसकी ज़्यादा है, तो इसके इलाज और उसकी जो सुविधा है वो कितनी शासकीय तौर पर उपलब्ध है इसमें?
0: हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है, और उसकी 3 डोज लगाई जाती हैं, एक पहले मंथ पे, फिर 1 महीने के बाद दूसरे मंथ पे, और एक फिर 6ठे मंथ पे, और उसकी 3 वैक्सीन लेने के बाद में वो इम्यूनाइज हो जाता है। और कभी कभी जो कि काफी इस हेपेटाइटिस बी ना हो, और वो जैसे कि हम लोग सर्जन लोग हैं और या जो कि ब्लड बैंक में काम करते हैं, या कोई डॉक्टर है जो कि इंजेक्शन वगैरह लगाते रहते हैं, या कोई डेंटल सर्जन है, तो इन लोगों को वैक्सीनेशन हर 3 साल के बाद में लेते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी में इम्यूनिटी ढंग से बने रहे, क्योंकि कभी भी दूषित पेशेंट हमारे पास में आ सकता है और उसकी निडल जो है हम लोगों को लग सकती है, या ऑपरेशन करते समय हमें कोई इंजरी हो सकती है।
1: मतलब आप उस कंडीशन में, उस वातावरण में हमेशा काम करते हैं जहां इसके इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को बार बार इम्यूनाइजेशन की जरूरत है।
0: हाँ, तीन
1: बाकी
0: तीन
1: व्यक्ति
0: एक बार ले लेते
1: एक
0: हैं।
1: बार अगर करा ले
0: हाँ
1: तो वो सुरक्षित रहता है। साफ सफाई और जो आप आसपास का वातावरण है इसमें, जैसे गंदगी रहती है, ठीक से खान पीन हमारा ठीक नहीं है, तो वो भी क्या इस चीज को बढ़ावा देता है इसमें?
0: बिल्कुल ऐसा है कि हमारे आसपास का वातावरण अभी स्वच्छ नहीं है, हमारे जो खाने पीने की जो

0: फल वगैरह हैं वो फ्रेश नहीं है, और जो
1: हुँ.
0: खाना हमारा, जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं है, मतलब दूषित है, तो इससे हमारा हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, पानी हम लोग साफ पिए, उबला हुआ पानी पिए, और खास तौर से गर्मियों में और बरसात के मौसम में तो बिल्कुल हम पानी के लिए ध्यान रखना जरूरत है।
1: जी, जो कुछ चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे ये बीमारी के संदर्भ में, जो इसके प्रकार है वो
0: हाँ, मैं
1: भी.
0: एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा इस बीमारियों के लिए, क्योंकि हिपेटाइटिस जो है वो यदि कोई स्टेरॉयड कोई मेडिसिन ले रहा है स्टेरॉयड, या किसी को एचआईवी है, तो उसमें हिपेटाइटिस के बी के जो लक्षण होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, और इसका जो प्रोग्नोसिस होती है बहुत पुअर हो जाती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मथुरा के आसपास के एरिया में हिपेटाइटिस बी और सी बहुत तेजी से फैल रही है। इसका मुख्य कारण जो है, हम लोग जो हैं झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं, जो कि एक खराब सिरिंज से एक इंजेक्शन लगा देते हैं जो कि दूषित मरीज के ऑलरेडी यूज करी हुई होती है, और यही कारण है कि यहाँ पे हिपेटाइटिस बी और सी बहुत तेजी से फैल रही है। तो मेरा सबसे अनुरोध जो है कि वो जो है झोला छाप डॉक्टरों के पास में ना जाकर जो है, या जाते हैं तो अपनी सिरिंज जो है वो नई यूज करें और उसका ध्यान रखें, जिससे कि किसी दूषित पेशेंट की सुई हमारे ना लग जाए।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम में भेंट वार्ता, हेपेटाइटिस कारण लक्षण और बचाव। वार्ताकार थे डॉक्टर संजीव कुमार जैन, और आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: उद्घाटन कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
2: शाहजहांपुर में बीते माह विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और प्रशासनिक गतिविधियां सुर्खियों में रहीं। राजकीय इंटर कॉलेज खन्नीबाग मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां 177 हिंदू और 28 मुस्लिम सहित कुल 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विवाह को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर 1-1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 64,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में, 21,000 रुपए की गृहस्थी सामग्री तथा 15,000 रुपए समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। उन्होंने नव विवाहित दूल्हों से अपनी पत्नियों का सम्मान करने और उन्हें समान अधिकार देने की अपील भी की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन हुआ। विकास खंड भावलखेड़ा में वन विभाग द्वारा 7,500 पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरिशंकरी पौधा लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। इस वर्ष जनपद में 52.55 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा करने का संकल्प लिया गया।
3: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण खगड़िया क्षेत्र में खासतौर से किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने का और जो गर्मी पड़ रही है उसको भी मिनिमाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस साल 35 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 35 करोड़ वृक्ष केवल आज लगाने का लक्ष्य रखा है। 52,55,000 वृक्ष शाहजहांपुर में लगाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आज शाम तक हम जरूर पूरा करेंगे।
2: इसी क्रम में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गर्रा नदी स्थित राजघाट पर बृहद स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों ने घाट और नदी तट की सफाई कर लोगों को स्वच्छ नदी, स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और नदी और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अन्य

0: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए कुल 1843 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक भी किया। विकास कार्यों को गति देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हथौड़ा क्षेत्र में 15.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सदर तहसील के नए अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, नए तहसील भवन के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा सदर और ददरौल क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने विकास भवन में सीएम डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि शाहजहांपुर ने सीएम डैशबोर्ड पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर प्रमुख सचिव ने प्रशासनिक टीम की सराहना भी की। अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव ने लगभग 26.33 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, कबड्डी हॉल और 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के तैयार होने से जनपद के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का 100% एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में फूड फेस्टिवल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में बीते माह जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरक्षण के विकास को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से जारी रहीं। कौशलेन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर।
1: शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
2: प्रतापगढ़ को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदर और विधानसभा विश्वनाथगंज के अंतर्गत 384.71 करोड़ रुपए से अधिक की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें प्रतापगढ़ सदर की 42 व विश्वनाथगंज की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं प्रतापगढ़ सदर की 45 एवं विश्वनाथगंज विधानसभा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ के औला किसानों ने जो अमृत फल दिया, उसके अनेक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, इसी से यहां की समृद्धि देखकर अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तहसील सदर के नगर पंचायत पृथ्वीगंज के पृथ्वीगंज भगेसरा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता कार्यालय पर भाई रहेंद्र कुमार शुक्ला ने की। शिविर में उपस्थित लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्रता आवेदन प्रक्रिया, ऋण संबंधित सुविधा एवं सरकारी सहायता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। साथ ही युवाओं, कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राम मोहन मीणा की अध्यक्षता में संसद विधायक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ त्वरित आर्थिक विकास, पूर्वांचल विकास निधि, संसद निधि, विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा विकास भवन सभागार में की। समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना से रुपये 2,926.75 लाख की लागत से स्वीकृत 156 कार्यों में 8 कार्यों की प्रगति तथा अवशेष कार्य निविदा की प्रक्रिया में पाए गए। निविदा की प्रक्रिया से पूर्ण कराते हुए सभी कार्यों को माह नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। योजना अंतर्गत भैरवनाथ धाम में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अब तक भूमि सीमांकन न होने पर संबंधित उपजिला अधिकारी को 2 दिवसीय में सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए। सांसद प्रतापगढ़ कि वर्ष 2024-25 के संसद निधि से स्वीकृत अपूर्ण नौ कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता

0: पीएसआई सी प्रयागराज से जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि विवाद होने की स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग से सहयोग प्राप्त कर विवाद निस्तारित कर 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम व दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन प्रसाद द्वारा किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का वर्ष 2026 तक का यह दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग सहित पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि, पशुपालन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इंफ्लुएंजा सिंड्रोम तथा अन्य संचारी रोगों व जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जल भराव समाप्त करने, एंटी लावा का छिड़काव, स्रोतों का समापन, बुखार के रोगियों को शीघ्र पहचान, जांच एवं उपचार, जन जागरूकता तथा मच्छर विकर्षी पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लेमन ग्रास, लेवेंडर, सेटोनेला आदि के रोपण जैसे कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचारी रोगों और जल जनित रोगों से बचाव के प्रति सजग रहने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पानी के एकत्र न होने दें, कूलर एवं जल पात्रों की नियमित सफाई करें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं तथा बुखार एवं अन्य रोगों के लक्षण दिखने पर निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल जांच एवं उपचार उपलब्ध कराएं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबोहवा। विषय है बरसाती जल का संचयन, आलेख और वाचन विभा शर्मा का है।
3: वर्षा जल संचयन वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए अधिशेष मानसून जो बहकर सागर में मिल जाता है उसका संचयन और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। अकेले भारत में ही व्यवहार्य भूजल भंडारण का आकलन 214 बिलियन घन मीटर के रूप में किया गया, जिसमें से 190 बीसीएम की पुनः प्राप्ति हो सकती है। इस समस्या का एक समाधान जल संचयन ही है। पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता, फसलों की सिंचाई के विकल्प के रूप में जल संचयन प्रणाली को विश्वव्यापी तौर पर अपनाया जा रहा है। जल संचयन प्रणाली उन स्थानों के लिए उचित है जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम 200 मिलीमीटर वर्षा होती हो। इस प्रणाली का खर्च 400 वर्ग इकाई में नया घर बनाते समय लगभग 1200 से 1500 रुपए मात्र तक आता है। जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा का एकत्रित किया जाता है। इसमें दो तरह के गड्ढे बनाए जाते हैं, एक गड्ढा जिसमें दैनिक प्रयोग के लिए जल संचय होता है और दूसरे का सिंचाई के काम में प्रयोग किया जाता है। दैनिक प्रयोग के लिए पक्के गड्ढे को सीमेंट व ईट से निर्माण करते हैं। इसकी गहराई 7 से 10 फीट व लंबाई चौड़ाई लगभग 4 फीट होती है। इन गड्ढों को नालियों द्वारा छत की नालियों टोटियों से जोड़ दिया जाता है जिससे वर्षा का जल सीधे ही इन गड्ढों में पहुंच सके। और दूसरे गड्ढे को ऐसे ही एक कच्चा बनाया जाता है, इसके जल से खेतों की सिंचाई की जाती है। घरों की छतों से जमा किए गए पानी को तुरंत ही प्रयोग में लाया जा सकता है। विश्व में कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे न्यूजीलैंड जहां लोग जल संचयन प्रणाली पर ही निर्भर रहते हैं। वहाँ पर लोग वर्षा होने पर अपने घरों के छत से पानी एकत्रित करते हैं। शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन वाटरशेड को एक इकाई के रूप में लेकर करते हैं। आमतौर पर सतही फैलाव तकनीक अपनाई जाती है क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिए जगह प्रचुरता में उपलब्ध होती है तथा पुनर्भरित जल की मात्रा भी अधिक होती है। ढलान, नदियों व नालों के माध्यम से व्यर्थ जा रहे जल को बचाने के लिए इन तकनीक को आसानी से अपनाया जा सकता है। पानी का कोई विकल्प नहीं है। कुछ

दशकों से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण जहां एक ओर भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक रूप से बारिश का पानी भूतल तक नहीं पहुंच रहा। भूजल पुनर्भरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में विद्यमान मृदा एवं चट्टानों की रचना के अनुरूप संरचना का निर्माण कर वर्षा जल के बहाव को एक निश्चित दिशा देकर जल रिसाव में वृद्धि करना तथा भूजल भंडार के पुनर्भरण में योगदान देना। जहां हमें भूजल के दोहन व उपयोग में सतर्कता बरतनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर युद्ध स्तर पर वर्षा जल संकलन भंडारण व भूजल पुनर्भरण करना होगा। वह भूजल पुनर्भरण हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। विषय था बरसाती जल का संचयन। आलेख और वाचन विभा शर्मा का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा। विषय है स्वतंत्रता के संबंध में गांधी जी के विचार। प्रस्तुति आगरा केंद्र की है।

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: पिताजी ने शरीर पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग पर कहां कहां बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी जैसी की वैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, मेरे मन ने उस समय नहीं की थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था, ब्याहने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था, इसलिए उस समय के स्मरण ताजे हैं। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधु साथ में रहने लगे। वो पहली रात दो निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। हम दोनों एक दूसरे से डरते थे ऐसा मुझे लगता है, एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। बातें कैसे करना, क्या करना सो मैं क्या जानूं, प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती। लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है? जहां संस्कार बलवान है वहां सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी के उम्र के थे पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पैसे पैसे की या पाई पाई की मिला करती थीं। उनमें दंपति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत तो थी ही कि मैं पढ़े हुए में से जो पसंद आए उसे याद कर लेता था और जो न पसंद आए उसे भूल जाता था। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहने चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना बहुत कम ही रहती है। पर इन सद विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को भी एक पति व्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए में से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंच गया। और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी करनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी? मुझे हमेशा ये जानना ही

0: चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वो कहीं जा ही नहीं सकती। ये चीज हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी न जा सकना तो एक तरह की कैद ही हो गई, पर कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहां इच्छा होती वो मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वो अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज बन गई। कस्तूरबाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूं। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वो देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी को मिल जाने पर दबाव क्यों सहन करे? अगर मैं उस पर दबाव डालता हूं तो वो मुझ पर क्यों न डाले? ये तो अब समझ में आ रहा है, उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था।
1: ये थे बापू के विचार और अब हम आपको सुनवाते हैं बापू का

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। विषय था स्वतंत्रता के संबंध में गांधी जी के विचार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

जिसकी माटी का कण कण रतन है, ऐसी माता को मेरा नमन है। अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष काव्यात्मक संवाद। पर्यावरण एवं जीवन मूल्य, वार्ताकार है डॉक्टर कृष्णावतार उमराव विवेक निधि और आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: बताओ, जीवन में साहित्य के सृजन हेतु जीवन की घटनाएं, प्रकृति के आसपास घटित दिवस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिल करके मानव जीवन को समृद्ध बनाती हैं। तो अभी हम इस माह में वृक्षारोपण कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे और ऐसे बिंदु हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं। इन्हीं पर कुछ रचनाओं के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णावतार उमराव विवेक निधि जी, जो आज हमारे पास बैठे हुए हैं। तो विवेक निधि जी, आपका हम स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि वृक्षारोपण जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, कुछ रचनाएं उससे जुड़ी हुई आप हमारे श्रोताओं को अगर पहुंचा सकें तो मैं आपका स्वागत करता हूं।
2: धन्यवाद
1: जी।
2: सबसे पहले मैं इस रचनाओं की प्रस्तुति में दो पंक्तियां अपने इष्ट को समर्पित कर रहा हूं।
1: जी, स्वागत है।
2: मां पार्वती शंकर सहित सुत कार्तिकेय गणेश, विवेक निधि का लो नमन जगमग हो परिवेश।
1: जी,
2: इसके बाद मैं, जैसा कि मौसम चल रहा है, वर्षा हो चुकी है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है आजकल। लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं और भी लोग जो पदाधिकारी लोग जो है,
1: समाज का कार्यक्रम
2: एक वृक्ष माँ के
1: है।
2: नाम
1: हाँ।
2: ये वो चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी एक जो है वृक्षारोपण के बारे में बताया है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए। वृक्षारोपण कर पृथ्वी का पर्यावरण बचाए, वृक्षारोपण कर पृथ्वी का पर्यावरण बचाए, और लगा वृक्ष लगा खाली जमीन पर हम सब धूम मचाएं, वर्षा के आने से पहले कर लें सभी तैयारी, गड्ढे खोद कंपोस्ट खाद दो सड़ने की बारी, छायादार और फल वाले पेड़ है तुम्हें लगाना, कीड़े और मकोड़ों पशुओं से है तुम्हें बचाना, मानसून की वर्षा देखो निकट नर्सरी जाओ, लेकर वृक्ष खुले गड्ढों में जाकर वहां लगाओ, अपने घर आंगन व पार्क में वृक्षारोपण करना, इसके खातिर पापा मम्मी से हरगिज मत डरना, पेड़ हमारे साथी हैं गर्मी से हमें बचाएं, छाया में खेलें संग सहेली मिल बैठ करें चर्चाएं, वृक्षारोपण किया आपने अब फल मिलने वाला है। अब वृक्षारोपण करते हैं तो फल मिलता है उसका। वृक्षारोपण किया आपने अब फल मिलने वाला है, आम देख रसीले जामुन खुश बच्चा बच्चा वाला है, अपने जन्मदिनों पर बच्चों सबको पेड़ लगाना है। एक संदेश है बच्चों के लिए, अपने अपने जन्मदिनों पर सबको पेड़ लगाना है, विवेक ने निश्चय कर दूषित पर्यावरण भगाना है, विवेक ने दूषित कर निश्चित पर्यावरण बचाना है।
1: अच्छा, इसमें विवेक निधि जी, सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाने बल्कि जल नहीं होगा, जल सिंचित नहीं करेंगे, जल का उनको अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर पेड़ भी आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो जल की भी जो जीवन का आधार

0: जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके संदर्भ में भी कुछ रचनाएं आपने लिखी हो तो हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: चलिए, स्वागत है। जैसा हमारे सिंह साहब ने बताया, देखिए हम पानी हमारा आधार है, जल जीवन आधार है
0: जी।
1: इसके बारे में कुछ हमारा जो है कुंडलिया हमारी, ये जीवन अनमोल है, ये जीवन अनमोल है, जल जीवन आधार, ये जीवन है जगत का, ये जीवन का सार, ये जीवन का सार यही अनमोल खजाना, निज पानी बिन पानी सब सुन जानता सकल जमाना, विवेक निधि बचाना इसका नहीं कोई मोल, जल सदा संचित करें ये जीवन अनमोल, ये जीवन अनमोल।
0: विवेक निधि जी, आप तो साहित्यकार रहे हैं, जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है, तो जब मानवीय संबंधों की हम बात करते हैं तो कई बार ऊंच नीच हो जाती है, तो ऐसे में एक व्यक्ति क्षमाशील है, दयाशील है, करुणावान है, विवेकवान है, तो कितना चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर हम चीज़ों को क्षमा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे कहते हैं लेट्स गो, जाने दो भाई कोई बात नहीं। तो जीवन में ये जो सोच है कि हम किसी को क्षमा कर दें, किसी को हम गलती हो जाए तो माफ़ कर दें, तो कभी ऐसा आपने लिखा कि क्षमा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है?
1: जी देखिए, हम लोग जो है बात बात में बिगड़ जाते हैं, क्रोध करते हैं। हमारे यहाँ पहले कहा गया कि क्षमा बड़न को चाहिए,
0: छोटन को अपराध। जी
1: मैंने आई कुंडली में ये दिया है, अभी क्षमा दिवस हमने मंगाया बनाया है 7 जुलाई को। यदि कोई गलती करे उसको करिए माफ, यदि कोई गलती करे उसको करिए माफ, मनोवांछित फल मिले होता है दिल साफ, होता है दिल साफ, बड़ों का कहना माने, हो तो बड़ो हित मेल सभी गुण ज्ञानी जाने, विवेक निधि से जीवन ज्योति जलती, माफ करें दिल खोल यदि कोई हो गलती, माफ करें दिल खोल यदि कोई हो गलती।
0: मतलब कभी कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ। तो इससे निश्चित तौर पे समरसता आती है, कुछ अच्छा होता है। और समरसता की बात अगर हम ब्रज में करें, ब्रज से जुड़ी हुई जो महाशक्ति हुई, कृष्ण हुए, उनकी मुरली हुई, उनकी बंसी हुई, तो उसने तो प्यार का ही गीत गाया है, प्रेम का गीत गाया।
1: जी, जी।
0: तो अगर आप प्रेम करते हैं तो माफ करने की शक्ति भी आ जाती है उसमें। तो कुछ ऐसी कोई रचना सुनाना चाहें आगे हमारे श्रोताओं को, तो स्वागत है आपका।
1: देखिए मैं यहाँ, आप जानते हैं कि ब्रज में हमारी भगवान कृष्ण की बंसी बड़ी मधुर, उसकी आवाज़, सखियाँ दूर से आकर्षित होती थी उनकी बंसी को धुन करके। तो यहाँ पर मैं एक जगह थोड़ा हमारे सिंह साहब ने कि मुरली और बंसी का प्रयोग आपकी इन दोहों में आ जाए तो अच्छी बात है, वही मैंने स्पष्ट किया है। सुन बंसी की धुन हुई, सिंह साहब
0: जी,
1: सुन बंसी की धुन हुई राधे अंतर ध्यान, मन में अति हर्षित हुई बंसी बट दरम्यान, छवि राधे की देख कर कृष्ण हुए अधीर, आपस में आकर मिले यमुना नद के तीर, नौका बिहार की बनी जब आपस में राय, राधे श्याम हो रहे हैं पुलकित अधिकाय, राधा रानी जा छुपी, सखियां ढूंढ रहे उनको कहां गई राधा जी, राधा रानी जा छुपी मुरली धर के पास, सारी सखियां सन्न हैं बात न कोई खास, विवेक निधि नटखट बड़े, आप जानते कन्हैया जी के बारे में लोग कहते बड़े नटखट हैं, विवेक निधि नटखट बड़े नटवर नंद किशोर, अब बंसी की धुन सुन सभी सखियां आत्मविभोर, बंसी की धुन सब सखी सखियां आत्मविभोर।
0: तो इस तरह से ब्रज की बात हुई, बंसी की बात हुई, प्रेम की बात हुई, क्षमा की बात हुई, पर्यावरण की बात हमने की।

0: लेकिन कुछ हम अगर नागरिक अधिकारों पर आपसे जानना चाहें, नागरिक बहुत सारी आजकल चर्चाएं चल रही हैं इस तरह की कि एक व्यक्ति अगर एक राष्ट्र में रहता है तो समान कानून होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, कर्तव्य भी होने चाहिए, तो इस पे एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत कुछ हुआ जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुत कुछ राय भी निकल करके आ रही है, तो आपने कुछ इसको साहित्य की दृष्टि से देखा और लिखा हो तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अंत में।
1: देखिए, एक बड़ा विषय काफी दिनों से उठाया जा रहा है
0: जी,
1: मांग है जनता की भी और हमारे प्रासंगिक नेताओं की भी, आम जो प्रबुद्ध वर्जन है, कि नागरिकता संहिता जो है आनी चाहिए बराबरी की। तो देखिए, समान नागरिक संहिता पर एक जो है गीत है, एक नियम कानून सभी को पालन करना होगा, एक नियम कानून सभी को पालन करना होगा, समान नागरिक संहिता से कभी न डरना होगा, किसी मजहबी वर्ग भेद की चलेगी ना मनमानी। आप अपने अलग अलग धर्म से अपने अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जब अगर संहिता बन जाएगी तो किसी

0: उसको भरना होगा। अगर जो भी कोर्ट सुनाएगा, कोर्ट सुनाएगा दंड जो उसको भरना होगा। एक नियम कानून सभी को पालन करना होगा। एक निशान व एक विधान को सभी लोग मानेंगे। नहीं पढ़ा है संविधान तो पढ़ करके जानेंगे। लोकतंत्र में न्याय मिलेगा, धीरज धरना होगा। एक नियम कानून सभी को पालन करना होगा। एक सख्त कानून बने जन जन का ध्यान धरेंगे। एक सख्त कानून बना जन जन का ध्यान धरेंगे। अल्पसंख्यक अगड़े पिछड़े दलितों का मान करेंगे। जनजाति आदिवासी लेकर संग संग चलना होगा। एक नियम कानून सभी को संग संग करना होगा। मान तिरंगे का रखकर ही अगला कदम बढ़ेंगे। अरिमर्दों को वीरों की ले टोली वहां चढ़ेंगे। मातृभूमि के रक्षा ही सबको मिट मरना होगा। एक नियम कानून सभी को पालन करना होगा। अंतिम बंद है, यदि विकास चाहो समान नागरिकता संहिता लाओ। भारत के नागरिकों सोचिए, यदि विकास चाहो समान नागरिकता संहिता लाओ और नारी शक्ति को सजग करो सबको अधिकार दिलाओ। विवेक जनगण मन की बैतरणी तरना होगा। एक नियम कानून सभी को पालन करना होगा। एक नियम कानून सभी को पालन करना होगा।
1: तो श्रोताओ, आप थे कृष्णावतार उमराव विवेक निधि जी और कुछ जीवन से जुड़े हुए पहलू, चाहे पर्यावरण का हो, वृक्षारोपण का हो, क्षमा का हो, जल का हो, या फिर अधिकार और कर्तव्यों की बात, उस पर अपने विचार और अपने कुछ रचनाएं दे रहे थे। विवेक निधि जी, आप आए हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विशेष काव्यात्मक संवाद पर्यावरण एवं जीवन मूल्य। वार्ताकार थे डॉक्टर कृष्णावतार उमराव विवेक निधि और आपसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म सिलसिला में, और आइए सुनते हैं आरती मुखर्जी को। फिल्म का नाम है मासूम।

0: संगीत का आनंद इस समय आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से ले रहे हैं।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म दो और दो पांच में। और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों को। फिल्म का नाम है कुर्बान।

आशा भोसले और साथियों के गाए फिल्म शान के गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म निकाह से। आवाजें हैं गुलाम अली और साथियों की।

भी आपने सुना फिल्म निकाह में गुलाम अली को, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म चांदनी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, बाबला मेहता और साथियों की।

संगीत का आनंद हमारे श्रोता इस समय ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। नाम है प्रेम रोग।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 11 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: आकाशवाणी मथुरा,
0: जी, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं धामनगाव जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से बोल रहा है, भागवत देठे पाटिल।
0: पाटिल साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे
1: धन्यवाद सर।
0: हैं आप और आपका परिवार?
1: बहुत अच्छा है। हम आप
0: कार्यक्रम
1: कैसे हैं? अच्छा
0: हम बहुत अच्छे हैं सर, दुआएं हैं आप लोगों की।
1: है,
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारा लगातार?
1: हाँ लगातार सुन रहे हैं सर।
0: जी, फोन कॉल कब आती है आपकी?
1: 2-3 महीने के बाद लगाता, मैं सभी श्रोताओं का भी फोन लगाना जरूरी है ना, रखना
0: अच्छा, सभी लोगों का ध्यान रखते हैं आप।
1: ही पड़ता ना, अपने लोग है
0: जी
1: ना सब।
0: जी बिल्कुल अच्छी बात है, ये सोच आपकी बड़ी अच्छी है। आज
1: आज
0: बताइए कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहेगी?
1: लोफर का गीत सुनना, वो बारिश वाला बेईमान
0: आज मौसम बड़ा बेईमान है।
1: है।
0: जी, सुनवाते हैं पाटिल साहब आपकी फरमाइश का गाना।
1: हाँ
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: coração.
1: Alô?
2: Param Arin, Charles Sahab, Sada Supreme, Pyar Bhai Namaskar.
1: Namaskar, कौन बोल रहे हैं सर?
2: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रद्धा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: प्रजापति जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है बहुत बहुत।
2: जी हृदय से धन्यवाद मानवर। आज सुबह सुबह 8 बजे से लेके 30-40 मिनट अच्छी बारिश हो गई, रिमझिम रिमझिम, और अभी बादल छाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त।
1: हाँ आज तो मौसम काफी सुहावना हो लिया है।
2: जी जी
1: गर्मी काफी पड़ रही थी सर कई दिनों से।
2: हाँ जी हाँ जी, एक सप्ताह तक तो अच्छी खासी गर्मी हुई, धूप हुई, और 7-8 तारीख को जुलाई में बारिश हुई थी, उसके बाद आज 15 तारीख को बारिश हो रही है।
1: बिल्कुल, आज ऐसे में क्या फरमाइश है प्रजापति जी कार्यक्रम में?
2: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है भूल भुलैया, इसका शीर्षक गीत है तेरी बातों की भूल भुलैया तेरी आंखों की भूल भुलैया, बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से प्रसारण हेतु।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं प्रजापति जी आपकी पसंद का ये गाना, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।
2: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल सिंह ग्राम नगरा विजयी साया आपसे बात कर रहा हूँ जी।
0: स्वागत है नेत्रपाल जी कार्यक्रम में।
1: आज की फिल्म है ब्रजभूमि,
0: जी,
1: चारों धामों से मेरा धाम में दर्शन कर लो जी।
0: और नेत्रपाल जी सब ठीक हैं?
1: सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम हो रहा है और
0: जी,
1: वही क्या
0: सुनवाते हैं नेत्रपाल जी आपकी पसंद का ये गाना। बहुत
1: सर।
0: बहुत
1: राधे
0: धन्यवाद।
1: सर, राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो।
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार।
1: मैं जवाहर सिंह गांव सायपुर से चिलनदुई जिला भरतपुर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ।
0: स्वागत है जवाहर सिंह जी कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है सर?
1: ठीक ठाक हैं आप बताओ।
0: हम तो अच्छे हैं। घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं आपके?
1: हाँ सब ठीक हैं सब।
0: बारिश हो रही है या नहीं?
1: हाँ बरसात की कमी है।

0: अच्छा, अभी बिल्कुल नहीं पड़ा पानी?
1: हाँ बिल्कुल नहीं है साहब, फसल सूखने पर पहुंच रही है।
0: अरे, मानसून तो आ लिया लेकिन आपकी तरफ नहीं पहुंचा अभी तक।
1: पहुंचा नहीं है साहब।
0: चलिए, कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं,
1: हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं साहब, लगातार सुन रहे हैं।
0: ठीक है। आज बताइए क्या फरमाइश है।
1: आज फरमाइश में ऐसा वो फिल्म थी राजकुमार, वो मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा ना जाए।
0: सुनवाते हैं सर आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी सारस्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सांवरिया गांव थैरावर तहसील कुमेर जिला ढीग राजस्थान से।
1: स्वागत है सांवरिया जी कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है आपका?
0: अजी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाओ हालचाल, कैसे हैं आप?
1: सब आनंद से हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहो, हम तो साहब यही कहेंगे सारस्वत जी, हमारा आपका मिलना बना रहे। हाँ
1: जी जी ऐसे ही बातें होती रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। काम
1: और काम अच्छा चल रहा है आपका?
0: सही है जी, और बरसात भी हुई है कुछ पर कम हुई है, और
1: अच्छा
0: गर्मी से भी राहत मिली है। चलो
1: जी जी आज मथुरा में भी थोड़ी राहत है।
0: बहुत अच्छी बात है, ये ऐसी राहत यहाँ है साहब।
1: जी आज बताइए क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में सर?
0: आप सुनवाइए साहब, जीने की राह
1: जी
0: आने से उसके आए बाहर।
1: सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: धन्यवाद सारस्वत जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम अर्पण। मन बड़ा चंचल है, जिस दिन हम अपने भीतर झांकने का साहस कर लेते हैं उसी दिन परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आत्मचिंतन से जन्मा परिवर्तन ही सबसे स्थायी और सबसे दिव्य होता है। सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण संतुष्टि है। मन दौड़ता बहुत है पर पहुंचता कहीं नहीं, इसीलिए तो चंचल है। इसीलिए मन को स्थिर रखें, प्रभु भक्ति में लगाएं।

लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म लगान में। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी, संगीतबद्ध ए आर रहमान ने किया था।

जिंदगी अच्छे और बुरे दोनों ही पलों से मिलकर बनी है, दोनों का ही अपना अपना स्वाद है, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। यानी ना तो कभी खुशी को सिर पर बिठाना चाहिए और ना कभी गम को दिल से लगाना चाहिए, बस ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर ही तो सत्य है।

कहते हैं ना साथियों कि हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में परिणाम उसी के ही हाथ में होता है जिसकी मर्जी से ये संसार चलता है। योजना इंसान बनाता जरूर है, पर निर्णय सदैव भगवान का होता है।

अभी आपने सुना बीजू बावरा फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने। शकील बदायूनी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। जन्म देते ही माता पिता बच्चों के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उन्हें किसी तकलीफ में ना पड़े, लेकिन सोचिए कि जिसने ये दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। तो बेवजह तनाव में ना रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करिए।

हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब जीवन की हर परिस्थिति में मन ये कहना सीख जाता है जैसे मेरे सांवरे की इच्छा, तब संसार का कोई भी दुख आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता है और झूमता है, नाचता है बस।

लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत को हमने लिया था फिल्म सौदागर से। चलते चलते साथियों बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जिसके हरी है सारथी निश्चय उसकी जीत, जिसके हरी है सारथी निश्चय उसकी जीत, जिस मन हरी बसे उस मन प्रीत ही प्रीत, बस यही प्रीत अपने प्रभु से लगाए रखिएगा।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है आपका अपना कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आपकी RJ मित्र चंद्रा कत्री। नमस्कार साथियों, करते हैं प्रारंभ आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम। संदेश लिख भेजा है बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर ने मध्य प्रदेश खंडवा से। इसी के साथ जुड़ रहे हैं शेख सईद रही और मुन्ना भाई। साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। यह दिन 17 जुलाई यानी आज के दिन विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। यह दिवस 1998 में रोम संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC की स्थापना की थी। यह दिवस मानव अधिकारों, वैश्विक कानूनी जवाबदेही और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के पीड़ितों को समर्थन देने के लिए बढ़ावा देता है। तो आज अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे यही विषय। इसके लिए आप भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस विषय पर।

जुड़ते हैं साथियों के नाम, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू, डॉक्टर रमेश, आप सभी साथी पटेल नगर मालोट से हमसे जुड़ रहे हैं। ललन मिश्रा नूतन, अमन पारासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, आप सब फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, माहेश्वरी, प्रबालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश, आप सभी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका शुक्रिया। बुल्डाना से नारायण, हागे एंड कमल, दिव्या एंड जय, कार्यक्रम सुनने के लिए शुक्रिया। विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश, हनुमानगण, राजस्थान से हमसे जुड़ चुके हैं। सुरिंदर, अनीता, रोहित, शिखा, प्रीतिशा और मैक्स, आप सभी नवा शहर पंजाब के श्रोता हैं। अगला संदेश संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य का है, आप बगेरा दुर्ग से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ हमसे जुड़ चुके हैं राजकोट से जैमिन, हेतल और कृष्णा और राकेश। अगला संदेश सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, नाज, सलमानाज, असद, अरहाम और समस्त हाशमी परिवार का है, आप नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मधुबनी बिहार से जुड़ रहे हैं राजू कुमार गुप्ता, विनीता, रवि, गौरव और मित्रगण। इसी के साथ छपरा दालदली बाजार से हैं संजय कुमार, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु। सभी श्रोता हमसे जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है साथियों, यूं ही अपना साथ हमसे निभाते रहिएगा। रमेश चंद्र, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी, हिमांश, जोधपुर राजस्थान से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। रोहित, पीयूष, आर्यन, मुजफ्फरपुर बिहार से। पुनावाले से अजय, करिश्मा, अपिका और साइशा। इसी के साथ रामपुर के श्रोता हैं डी अशोक कुमार, अपिका, सानू और अर्चना। साधु शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल। उमंग, आकांक्षा एंड माही, आप सभी में एमपी से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ कमल बालूजा, मधु और सागर, आप सभी मजनू का अटिल्ला से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गांव केरो, जिला तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। अच्छा लगता है सब सार।

0: का सारा परिवार मिलकर हमारा जब FM 102.2 MHz सुन रहा होता है। इसी के साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से मुकेश, गौरव, गरिमा शर्मा एंड हर्ष। नई दिल्ली से रविंद्र चावड़ा और स्वीटी। सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक, आप सभी जिला जालौन से जुड़े हैं। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये सदाबहार गीत।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

हाँ तो साथियों बात कर रहे थे कि आज का जो दिन है वो कहलाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो आज का जो दिन है ये है उद्देश्य इसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय प्रणाली को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और गंभीर अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाना। आईसीसी की स्थापना का रास्ता साफ हुआ 1 जुलाई 2002 को। जी हाँ साथियों, आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। इस दिन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 2010 में। साल 2010 में युगांडा के कंपाला में आयोजित एक समीक्षा सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने आधिकारिक तौर पर हर साल 17 जुलाई को इस दिन मनाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में संदेश को भी जोड़ लेते हैं। जी हाँ साथियों, मोहम्मद बुरहानुद्दीन फरहान लल्ला समयरा आजमीन गुड़िया, आप सभी तेलंगाना से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से रिजवान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान, धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा, ईशान और पूजा, आप सभी भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी जोधपुर राजस्थान से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, मंगलाबेन, राजेंद्र पी शाह, आप सभी नेपा नगर से हमसे जुड़ रहे हैं। साबित खान, धर्मेंद्र, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला संदेश मुन्ना भगत, गुड्डी भगत पश्चिम बंगाल से है। उत्तम कुमार, श्वेता, किशु, अर्णव, सत्यम, आप सभी झारखंड से हमसे जुड़ चुके हैं। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनो, दिवांशी, आराधना एंड रोनिका, आप सभी हमसे बुंदेलखंड से जुड़ चुके हैं। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है मीरा, सिमरन और योगेश कुमार ने, आप सभी महादेव पारा से हैं। कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री, इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर W अंसारी और डॉक्टर BB अंसारी, दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना खान और शकीला अंसारी, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई, किशोर वानखंडे, उषा वानखंडे, विशाल, आप सभी बुलडाणा महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। बिहार रेडियो लिसनर क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा एंड सोनाली, अनामिका, शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं। तेलंगाना से आयशा, तबस्सुम, जुबेरिया एंड खाजा फसीउद्दीन एंड खाजा रिजाबुद्दीन, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल, शाहीन, सोनू एंड निप्पी, गीत बात और SMS कार्यक्रम से जुड़ रहे सभी श्रोता, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अशोक, प्रमिला, चीनू, दीपक, अनुश्री, आप सभी बिलाई नगर छत्तीसगढ़ के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। हेमंत नामदेव, नंदिनी, नेहा, छन्नूलाल एंड रजन साहू छत्तीसगढ़ से, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल एंड विलिस सहारनपुर से, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु, आप सभी पंजाब के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। सुशीला देवी

सदानंद कुमार गौरव, अकोला के श्रोता, विशाल, कविता, विजय, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा से, पहलगांव कश्मीर से परजादा मिराज, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रायगढ़ से हैं उमाराज कुलदीप, जगदीश और प्रभा रानी। मलकापुर से संजय, उषा एंड प्रथमेश, गंगाधर, प्रमोद, प्रमी एंड प्रदीप, आप सभी महाराष्ट्र से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। भारत अंजु, दिव्येंदु, संस्कृति, पौरुष, आप बेंगलुरु से हैं। इसी के साथ जुड़े हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, सभी आप सभी पोटिया कला दुर्ग से जुड़ चुके हैं।

ये संदेश हम तक पहुंचाया है शंभू दयाल, विमला देवी, आम रजित, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक ने। अगला संदेश हम पढ़ रहे हैं मनभावन नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा एंड फुंदीबाई बागरी का। आप सभी राजस्थान के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।

अगला संदेश हम तक पहुंचाया है छत्तीसगढ़ से कमलकांत, प्रमिला, नेहा और पुष्पराज ऋषभ ने। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम में आज का हमने विषय लिया था अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। तो इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं आज के दिन ये? जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा उद्देश्य है, एकदम पाक, बिल्कुल दंड मुक्ति के खिलाफ की लड़ाई जो होती है वो यह है कि अपराधी चाहे किसी भी पद पर हो, अपने पद के बल पर न्याय से नहीं बच सकता। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा है इसका पहलू रहा, दूसरा रहा कि पीड़ितों को न्याय, बिल्कुल जैसे युद्ध होते हैं, नरसंहार होते हैं या जातीय हिंसा होती है, उससे जो पीड़ित होते हैं उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनके प्रति एकजुटता दिखाना। अगला होता है हमारा वैश्विक शांति, बिल्कुल विश्व स्तर पर शांति कैसे हो, वैश्विक समुदाय में कानून के शासन को बढ़ावा देकर वैश्विक शांति और सुरक्षा निश्चित करना, ये हम सबका उद्देश्य है आज के दिन न्याय को पाने का। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर कुछ चर्चा की और अब हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं एक और संदेश। संदेश मिला है रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा, बहुत ही ना ऑल्टरनेट जैसे सिस्टम होता है उसमें लिखा है इन्होंने, तो बड़े ही सजावट के साथ शुक्रिया। इसी के साथ मोहम्मद नसीर हुसैन पटेल, अमिताभ पटेल, आप सब अहमदनगर के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्ते दीदी जी, आप कैसे हैं? वेरी गुड, सुपर पेशकश, बहुत धन्यवाद, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, आपका शुक्रिया लातूर से हमसे जुड़ने के लिए। बहुत दूर से श्रोता हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि FM 102.2 MHz पर आप जुड़े रहते हैं। अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, आमना, आसमा परी इकबाल, अहमद फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, आप सभी मुंबई के श्रोता साथी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मुकेश, मधु, आशी, शिवन्या एंड अनु छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ चुके हैं। मालोट पंजाब, सिराज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी, सौरव, साइना, निवान, कुछ कुछ श्रोता तो इतना मतलब हम लोग के दिमाग में बस गए, बिल्कुल ना हम लोग को याद हो गया उनका नाम। नवी हसन।

शहनाज, नवीन हसन, सुहेल एंड अनम रस्सी द्वारसी, आप सभी मरहरा दरवाजा एटा से कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मिंटू, पिंकी, लवली, आरती, पंजाब से आप जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार, आप सभी बुलंद शहर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी का बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से नसीब, सलमा, रेहान एंड फैजान। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम। बिट्टू, रीटा, रजत और मयंक हरियाणा जज्जर से, आप सभी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से आसमा खातून और फातमा खातून, बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर के हैं डॉक्टर तस्नीम एंड इशिता। योगेश, ओम, बेबी गरिमा, रजत और मनीष चौधरी, आप सभी पंजाब के श्रोता हैं। पांडु, चंदन, उषा, चंदन, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रतापेश, संतोष, पांडुरंग, आप सभी कुंबार गली कोलगांव से हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि सुखरी कला से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नसीबुल इस्लाम गुनौरी और दानिश गुनौरी, आप सभी लोहारा लोनी से हमसे जुड़ चुके हैं। बाबा साहब सरगर गार्डन रोड पेटसड़े से हैं ज्योति, शुभम और महेश। श्रोता साथियों, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धनोरी तेरीवाला से निसार, नौशाद, बिबियालिया, आयान बाबू। डुमरों से हैं वली उल्लाह, असमानाज और गुड़िया बानो। रमेश कुमार, अंतरा और प्रभा, आप सभी छत्तीसगढ़ के श्रोता। इसी के साथ अगला जो संदेश हम तक पहुंचाया है, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नजमा और सरिता गौतम ने। इसी के साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और पूरा ही संगई परिवार। अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रणीता, प्रिंस एकांश एंड लाडला टुक टुक महाराष्ट्र से। मुन्नी देवी, जयप्रकाश, वसंत राव, हीरा मोती, पन्नालाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जावेद शगुफ्ता अंजुम झारखंड से।

0: इस गीत के साथ ही गीत बाद और SMS कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज के कलाकार हैं दामोदर शर्मा।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं दामोदर शर्मा के गाए ब्रज लोक गीतों का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे दामोदर शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई

0: गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सीआर व्यास का ख्याल गायन राग अभोगी विहाग और छायानट में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। किसान भाई और बहनों के लिए लेकर आएंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संध्या 6:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा कृषि में एआई का उपयोग। इसी के साथ एक और विषय को जोड़ेंगे बरसात में पशुओं की उचित देखभाल और रोगों से बचाव। इसी कार्यक्रम में होगी बातचीत, विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। पत्रकार होंगे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह और आपसे भेंट करेंगे रूप किशोर शर्मा। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे ब्रज नव कथा जब उठ गयो मेरो हाथ। वार्ताकार होंगे संतोष शर्मा। अपने सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे चैंपियन एक दिन में नहीं बनते, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसी के साथ युवा साथी फिल्म संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। बहनों के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोग 1:15 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे एक पेड़ माँ के नाम, बदलती जीवन शैली और महिलाओं का स्वास्थ्य। इसी के साथ होगी वार्ता, विषय रहेगा सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है आपसी विश्वास। वार्ताकार होंगी अंजु सूद। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा 2:30। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा 7:31। संध्या वंदन यह कार्यक्रम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 से आप सुनेंगे। नवरंग 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: रात्रि 8:30 पर समय रहेगा एक ही फिल्म से कार्यक्रम का। अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए अब करते हैं अपनी मातृभूमि को नमन।

0: संवित शुरू में अभी आपने सुना देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम वनिता लोग। आज की प्रस्तुति दे रही है आशु रावत।

छोड़ो सारे जग के काम, लगाओ एक पेड़ माँ के नाम। छोड़ो सारे जग के काम, लगाओ एक पेड़ माँ के नाम। इससे ज़रूरी नहीं है कोई काम, लगाओ एक पेड़ धरती माँ के नाम। होगा यही माँ का सच्चा सम्मान, है माँ का सब कुछ तेरे नाम। लगाओ एक पेड़ माँ के नाम। नमस्कार बहनों, मैं हूँ आज आपके साथ आशु रावत, लेकर आपका अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। बहनों, माँ और प्रकृति दोनों ही जीवन का मूल आधार हैं और दोनों के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना हमें रखनी चाहिए। ये दोनों ही हमें जीवन प्रदान करते हैं, तो इन्हें जीवंत रखना, इन्हें जीवन देना हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर हम बात प्रकृति की करें तो इसे जीवंत रखने में पेड़ पौधों का, वनों का जो जितना अहम योगदान है उसका, तो इसको हम सब जानते हैं अच्छे से, क्योंकि बिना हरियाली के, बिना पेड़ पौधों की ये धरती तो क्या हमारा जीवन बंजर हो जाएगा। तो बहनों, ऐसे इन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे धरती अच्छी बनी रहे, हमारा पर्यावरण अच्छा बना रहे, कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सरकार की तरफ से ऐसे बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को थोड़ी सी राहत मिल सके, उसको थोड़ा सहेजा जा सके, थोड़ा सा संवारा जा सके। इस धरती को, प्रकृति को सहेज कर रखने की या संवारने की आज के समय में तो खैर बहुत ही ज़रूरत है बहनों, और उन्हीं अभियानों में से एक है एक पेड़ माँ के नाम। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें सभी देशवासियों से अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया गया है। यह एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है। ये अभियान बहनों 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था, और जैसे हमारा रिश्ता, हमारे संबंध हमारी माँ के साथ होते हैं, वैसे ही हमें प्रकृति के साथ भी रखने चाहिए, या प्रकृति को अपनी माँ मानना चाहिए, उसे हरा भरा रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इस अभियान के तहत बहनों, हम पेड़ लगाकर अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही, साथ ही हमारा और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका प्रकृति से, हरियाली से जुड़ाव होगा, और वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ी जिम्मेदार बनेंगी कि ये सब हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पेड़ लगाना, पौधे लगाना, और केवल लगाना ही नहीं, उन्हें सींचना, उनको पोषित करना, उनकी देखभाल करना, क्योंकि ऐसा होता है बहनों कि पेड़ तो लग जाते हैं, करोड़ों पेड़ लग जाते हैं। एक कागज़ी तौर पर अगर हम देखें तो आज यहाँ इतने हज़ार पेड़ लगे, आज वहाँ इतने लाख पेड़ लगे, तो लग तो बहुत जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने सैकड़ों पेड़ जी पाते हैं ये भी हम सब लोग जानते हैं। तो कोशिश करिए कि एक पेड़ अपनी माँ के लिए ही लगाइए, और उसको बिल्कुल ऐसे पोषित करिए जैसे अपनी माँ को या माँ अपने बच्चों को करती है। और आज के समय में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है बहनों कि इस तरह के अभियानों को हम आगे बढ़ाएं, उनके सहभागी बनकर जिम्मेदारी निभाएं। फालतू में ऐसे ही अपनी बातें न बनाते रहें कि ये करना चाहिए प्रकृति के लिए, वो करना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो बड़े दिल को छू जाती हैं। टची अगर आदमी है तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है, लेकिन लगता है कि जब चीज़ों पर हमारा जोर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी एक वाक्य ऐसा हुआ बहनों, कल मैं एक ऐसी जगह गई जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, नीम के, आम के, पिलखन के, कड़ी पत्ता और नींबू के, बहुत सारा पूरा खेत था जहाँ पर खूब सारे पेड़ उगाए जाते थे, साथ ही फूलों वाले खूब सारे पेड़ थे जहाँ पर मैं अपने घर की पूजा के लिए कुछ फूल ले आया करती थी। लेकिन अचानक से कल वहाँ जाना हुआ तो देखा कि वहाँ एक भी पेड़ नहीं था। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से जो मालिक थे उस खेत के, उन्होंने वो बेच दिया, और आज

मतलब कल जब मैं वहाँ गई तो देखा सारा का सारा बिल्कुल बंजर हो चुका है, और जिसने वो लिया है वो वहाँ पर कॉलोनी बना रहा है। तो ऐसी बातें बड़ी दुखी करती हैं मन को कि हम कहाँ जा रहे हैं, विकास के नाम पर कर क्या रहे हैं। ये कोई विकास है कि सारे के सारे पेड़ आपने निकाल दिए और अब आप कॉलोनी वहाँ बना रहे हैं। तो जो प्राणवायु हमें जीवित रखती है, हम उसी को मिटाने पर तुले हुए हैं। अब ऐसे क्या हम जीवित रह लेंगे? इस कोरोना काल में हमने इसी ऑक्सीजन की कमी से, इसी प्राणवायु की कमी से अपने कितने लोगों को जाते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। लेकिन प्रकृति की दी हुई इस जिंदगी की हमें कोई कीमत नहीं है, कब संभलेंगे हम? इसलिए कोशिश करिए कि केवल पेड़ लगाएं ही नहीं, उसको सींचें, उसको पोषित करें। और अगर आप किसी किन्हीं लोगों को रोक नहीं सकते हैं ऐसे, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि आप पेड़ लगाएं और साथ में अपने बच्चों को भी लगाएं उसमें, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने जान पहचान वालों को। और मैं तो कहती हूँ कि बहनों, जब भी कोई, अगर घर में आपके कोई भी प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में पेड़ ज़रूर दीजिए, एक छोटा सा पौधा गमले में ज़रूर दीजिए। अगर हम में से कुछ लोग भी ऐसा सोचेंगे तो शायद कुछ हो पाए, शायद ये धरती थोड़ी हरी भरी रह पाए। जो भावनात्मक जुड़ाव हमारी हमारी माँ से होता है, वो अगर हम पेड़ पौधों से भी रखें, तो कहीं ना कहीं धरती का अपनी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, वो हमें संभाले रहेगी और हम उसे। तो एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं और उसे संभालें भी। और आज के समय की बहनों अगर बात करें, तो बहुत से स्कूल के बच्चों के द्वारा, बहुत सी संस्थाओं द्वारा, ऑफिस में सभी लोगों के द्वारा इस अभियान को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है, खूब पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छा है कि हम सभी भी इसके सहभागी बने, प्रकृति को सहेजें, उसको संवारने में अपना योगदान दें और मदद करें कि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। क्योंकि प्रकृति रहेगी तो हमारा जीवन भी रहेगा।

बहनों, रिश्तों में प्यार, सम्मान और भरोसा सबसे अहम होता है, चाहे फिर वो रिश्ता कोई भी हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि घर परिवार में रिश्तों की वजह से, या कहें तो कुछ काम के ज़्यादा बोझ की वजह से, जब महिलाओं पर, हमारी बहनों पर मानसिक दबाव पड़ने लगता है, तो ये बात किसी भी महिला के लिए परेशानी सी बन जाती है। रिश्तों की बात इसलिए आती है क्योंकि घर परिवार में लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, घर का काम, किचन का काम भी होता है, और कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि कहीं लोगों का आना जाना, घर के रिश्तेदारों का आना जाना घर में लगा रहता है। और ऐसे में बहनों, कोई भी महिला अगर कामकाजी है, उसको बाहर जाना है अपने काम पर, तो घर के काम के साथ साथ, घर की जिम्मेदारी के साथ साथ, बाहर के भी अपने काम को संभालना, ये उसके लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है, थोड़ा उसको बोझिल सा कर जाता है। दिखता नहीं है बहनों, पर दर्द सबको होता है। आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की जो बदलती हुई जीवन शैली है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले की जो औरतें होती थी, वो ज़्यादातर घर पे ही अपना समय गुजारती थी, घर के ही कामकाज देखती थी। लेकिन आज समय बहुत बदल गया है और आज महिलाएं अपने घर के साथ साथ बाहर भी थोड़ा फाइनेंशियली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकलती हैं, अपनी रोज़मर्रा के कामों में जाती हैं। तो घर की जिम्मेदारी को संभालना बहनों, और साथ में बाहर की भी जिम्मेदारियों को संभालना, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उनके पास घर के काम के अलावा, बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा, क्योंकि बच्चों को भी माँ की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो माँ पर बच्चों का ज़्यादा रहता है थोड़ा सा प्रेशर उनके काम, और इसके साथ साथ अगर आप बाहर जा रही हैं, तो ये सारे काम उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मन को भी बहुत प्रभावित करते हैं। कहें तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही इससे प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे में फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना उन्हें बड़ा परेशान सा कर देता है। और ऐसा देखा गया है बहनों अक्सर, कि अगर कोई भी परेशानी घर की किसी महिला को होती है, हमारी बहनों को होती है, तो महिलाएं बहुत समय तक तो उसे अवॉइड ही करती रहती हैं कि चलो काम चल रहा है, ऐसी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की। लेकिन जब चीज़ें बिल्कुल असहनीय हो जाती हैं, तब उन्हें डॉक्टर की याद आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बहनों। अपने घर के काम का, ज़रूरतों का, बच्चों का ध्यान रखिए, लेकिन अपने शरीर का

0: अपने मन का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इन दोनों का विशेष ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये चीज़ आपको ही करनी है, कोई सामने वाला आपके लिए नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपका मन सही है तो आपका शरीर भी सही रहेगा, और शरीर सही है तो मन भी सही रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब दोनों सही रहेंगे तो आप थोड़ा खुश रह पाएंगी, और अपने आप को खुश रखना हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अगर आप काम कर रही हैं घर का, तो कोशिश करिए कि अकेले ना करके परिवार के अन्य सदस्यों की भी थोड़ी मदद लीजिए। और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन्हें भी छोटे छोटे काम सौंप सकती हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहनों, अपने लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर दिन में निकालिए, योग को प्राणायाम को ज़रूर अपनाइए, संगीत सुनिए, जिससे कि आपका मन और तन दोनों ठीक रहे। ऐसे में परिवार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो परिवार की महिलाएं हैं उनको भावनात्मक सुरक्षा दें, थोड़ा प्रेम दें, सम्मान दें, जिससे कि उनका मन, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है बहनों, अगर इतना भी कुछ हमें घर से मिल जाए ना, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी मदद, तो इसी में वो बहुत बहुत खुश हो जाती हैं। तो ये चीज़ सब हम सभी को समझनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, हर रूप में, हर घर में मौजूद है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए एक दूसरे का, और क्योंकि जीवन है, थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर भी हो जाएं तो सहज होकर ही लीजिए, क्योंकि इससे जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है। इसलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर बात हम बहनों पति पत्नी की आपस के संबंधों की करें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पत्नी कामकाजी है तो पति उसकी थोड़ी सी मदद कर दे घर में, या पत्नी पति की मदद कर सकती है किसी भी तरीके से उसके काम में या किसी भी और अन्य घरेलू कामों में, तो वो उसकी मदद कर दे। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी आपसी समझ बनी रहती है परिवार में, सामंजस्य बना रहता है, और जब परिवार में सामंजस्य रहता है बहनों, शांति रहती है, तो जो घर के बच्चे होते हैं, जो नई पीढ़ी होती है, वो भी हम लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखती है और वैसा ही करती है। तो आपस में पति पत्नी में, यानी कि दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम रखना, सहानुभूति रखना, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संबंध विश्वास और भरोसे पर ही टिका रहता है। तो बहनों, आज इसी से संबंधित एक वार्ता हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ज़रूरी है आपसी विश्वास। वार्ताकार हैं अंजू सूद।
1: पति पत्नी संसार पथ पर चलने वाले जीवन रथ के दो पहिए हैं, जिनमें एक की स्थिति पर दोनों की गति प्रगति निर्भर करती है। अतः चुनाव ठीक होना चाहिए। दोनों में से एक भी अयोग्य कमजोर अगर हो तो दाम्पत्य जीवन का रथ डगमगाने लगेगा, और पता नहीं वह कहीं दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट भ्रष्ट ही ना हो जाए। दाम्पत्य जीवन पर ही परिवार का भवन खड़ा होता है। बड़ी बड़ी आशा आकांक्षाओं के साथ युवक युवतियां विवाह रचाते हैं, बड़ी बड़ी रस्में होती हैं, खूब समारोह आयोजित किए जाते हैं, गाना बजाना, रोशनी, बारात आदि के साथ दो प्राणी विवाह सूत्र में बन जाते हैं। परस्पर आकर्षण के कारण प्रारंभिक जीवन बड़ा सुखद प्रतीत होता है। बहुत जल्दी ही परस्पर भावनाओं का ध्यान ना रखने या उनका सम्मान करने के स्थान पर अधिकार की भावना जन्म लेने लगती है। एक दूसरे से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तब दाम्पत्य जीवन एक बोझ बन जाता है। मूल कारण वही है कि उनके व्यवहार में विकृति पैदा हो जाती है। यदि छोटी छोटी बातों को शुरू में ही सुधार कर लिया जाए तो दाम्पत्य जीवन को सुख शांति और आनंद का केंद्र बनाया जा सकता है। पति पत्नी को सदैव एक दूसरे के भावों, विचारों एवं स्वतंत्र अस्तित्व का ध्यान रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन की सफलता का सूत्र चाहते हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। पति पत्नी दोनों समान हैं, इनमें ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। जीवन यात्रा में ये दोनों अभिन्न हृदय साथियों की तरह हैं। पुरुष जीवन रथ का सारथी है तो नारी रथ की धुरी। पुरुष जीवन संग्राम में जूझता है तो नारी भी साधन सुविधाओं की सुरक्षा

और व्यवस्था रखती है। गृहस्थ जीवन के जितने भी सुख हैं वो सब दाम्पत्य जीवन की सफलता में ही तो मिले हुए हैं। स्वर्ग तुल्य सुख इसी धरती पर प्राप्त हो सकते हैं कब? जब दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। सुखी दाम्पत्य का आधार है पति पत्नी का शुद्ध सात्विक प्रेम। प्रेम में अहंकार का भाव नहीं होता, इसमें सिर्फ त्याग ही त्याग चाहिए, विशुद्ध प्रेम। ऐसा प्रेम जो एक दूसरे के प्रति गहन तल से समर्पण की भावना लिए हुए हो। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना से भरा होना चाहिए। प्रेम तो आत्मा से किया जाता है ना। स्त्री और पुरुष के बीच में विश्वास बनाए रखने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव उनके प्रेम बंधन को मजबूत बनाता है। अपने साथी को सच्चे हृदय से अपनाना, कहने का भाव है कि साथी के दोषों और गलतियों को सहानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना, एक दूसरे पर अविचल विश्वास रखना, संदेह के विष वृक्ष को कभी भी पनपने न देना, यही है सफलता के सूत्र। यदि आपस में मतभेद या गलतफहमी हो जाए तो जल्द से जल्द दूर करने का प्रयत्न करें। सरलता, मधुर भाषण और क्षमाशील स्वभाव से दाम्पत्य जीवन के सूखे वृक्ष में भी सरसता आ सकती है। सभी परिस्थितियों में एक दूसरे का पूरा पूरा साथ दें, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक व मानसिक। कैसी भी पीड़ाजनक या आनंददायक स्थिति हो, सदैव पूरा पूरा साथ दें। यथासंभव आलोचना से बचिए। कमजोरी और दोष किसमें नहीं होते, सभी सर्वगुण संपन्न नहीं होते। दोष निकालते रहने से परस्पर कटुता का भाव पैदा होता है और विश्वास नष्ट होता है, अतः दोष दर्शन से बचना ही चाहिए। स्वेच्छाचारी न बनकर हर कार्य को एक दूसरे की सलाह से पूर्ण करें। अधिकार और बड़प्पन की दुर्भावना को छोड़कर पहले आपका सुख फिर मेरा, यह भावना घर को स्वर्ग बना देगी। पति पत्नी एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, परस्पर विनम्र बने रहें, क्योंकि पति पत्नी में गुण और दोष या स्वभाव में अंतर तो रहता ही है। अलग अलग परिवारों में पले होने के कारण यह अंतर स्वाभाविक है। यदि उस भिन्नता को ही महत्व देकर बात बात पर अड़ा, खिजा और खिन्न हुआ जाता रहे तो परस्पर प्रीति कभी ठहर ही नहीं सकती। इस संबंध में दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति स्नेह, संरक्षण, मार्गदर्शन जो भी मिले उसी को ही मानना चाहिए। और मनुष्य का स्वभाव तो भूल और गलतियां करने के लिए ही हुआ है। ऐसी कुछ भूलें दाम्पत्य जीवन के दौरान भी हो जाया करती हैं। उसे लेकर बात का बतंगड़ बनाने की अपेक्षा उन भूलों को, गलतियों को सहज मानवीय कमजोरी के रूप में मान लिया जाए तो प्रेम में कमी आने की बात हो ही नहीं सकती। साथी के गुण व दोषों को स्वाभाविक मानकर चला जाए और साथ ही दोषों के परिमार्जन, गुणों के अभिवर्धन और व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान दिया जाए तो यह दाम्पत्य जीवन की सफलता का एक महत्वपूर्ण चरण होगा। हर दंपत्ति को स्वार्थ भावना से दूर परस्पर हृदय मिले हुए होना चाहिए। प्रेम परस्पर त्याग भावना और कर्तव्य भावना से ही करना चाहिए। सौंदर्य और वासना का प्रेम प्रेम नहीं, एक छलावा होता है। प्रेम तो आत्मा से ही किया जाता है, शरीर से नहीं। प्रेम कर्तव्य से करते हैं, कामुकता से नहीं। प्रेम में किसी तरह का कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। रूप यौवन का आकर्षण अधिक दिनों तक पति पत्नी को बांध कर नहीं रख सकता और ना ही रूप की कोई मर्यादा होती है। वह तो मनुष्य के मन की एक उपज है। एक अफ्रीकी के लिए काला रंग, मोटे होंठ, चपटी नाक, ये सब सुंदरता की निशानी हो सकती है और वहीं एक अमेरिका निवासी गोरे व्यक्ति के लिए यही सब कुछ एक कुरूपता का मानदंड हो सकता है। रूप स्थायी कभी भी नहीं होता, आयु के साथ ढल जाता है और अस्वस्थ होने पर बिगड़ जाता है। अगर रूप देखना है तो मानसिक सौंदर्य में देखें, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सद्विचारों से, सद्गुणों से और सत्कर्मों से इसमें तीव्रता और गति लाई जा सकती है। मानसिक सौंदर्य को बढ़ाते रहने से व्यक्ति

0: तुम्हें निखार आता है और यह निखार परस्पर प्रीति को बढ़ाने में पर्याप्त होता है। पति पत्नी को परस्पर विश्वासी होना चाहिए। किसी भी शंका पर दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास करने की बजाय सीधे सीधे एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। दोनों को ही एक दूसरे के विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। रुपए पैसे के मामले में परस्पर दुराव छिपाव नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका व संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। संदेह से सदैव वैमनस्य ही पैदा होता है। पति पत्नी के बीच अविचल विश्वास रहना चाहिए और इसी विश्वास, त्याग और सामंजस्य के आधार पर ही दाम्पत्य जीवन की बगिया महका करती है। इसके महकने और इसके सौरभ से संपूर्ण परिवार पुलकित और प्रफुल्लित रहता है और एक आदर्श व सफल जीवन बनता है।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी ये वार्ता। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है आपसी विश्वास। वार्ताकार थी अंजू सूद। और आइए अब सुनते हैं ये फिल्मी गीत।

न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। जिंदगी मुकम्मल तो है मगर पूरी से कुछ कम है। इसी के साथ बहनों अपने कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। आप सभी को आशुरावत का नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: मंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना

0: और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मॉल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान

0: किसान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
1: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी जी का।
1: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
1: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओं हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
1: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
1: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
1: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?

0: चलिए सुनते हैं एक नाटक,
1: कैसे बना हिमालय।
0: आज रिद्धि,
1: नव्या
0: और रिदित
1: सब बहुत खुश है
0: क्योंकि उनका परिवार
1: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
2: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
3: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
2: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
3: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
2: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
3: बहुत मजा आएगा।
0: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
1: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
0: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
1: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
0: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
1: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
0: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
0: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको रुको मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालय क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन

0: अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गई।
1: अच्छा।
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
2: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो।

निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
5: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
5: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
5: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुईं।
5: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन

0: दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
1: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
1: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
2: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना?
0: दादी ने पूछा।
1: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
2: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
2: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
2: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
2: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
2: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
0: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?

0: शेर राजम पर झपटे थे।
1: दादी ने जवाब दिया, स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
2: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
1: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
2: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
1: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
2: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
1: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
1: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे CIET और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजने को हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सायंकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफ़र अब शुरू होता है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन इस विषय पर। तकनीकी शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। यह केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान, आधुनिक तकनीकों और रोजगार संबंधी कौशल भी प्रदान करती है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवा नई मशीनों, कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, रोबोटिक्स तथा डिजिटल तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौशल का उन्नयन व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे रोजगार तथा स्वरोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराता है। सरकार भी स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को विकसित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी शिक्षा से उद्योगों को कुशल कर्मचारी मिलते हैं, साथ ही साथ देश की प्रगति और आर्थिक प्रगति भी तेज होती है। यह युवाओं में नवाचार, समस्या समाधान की क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करती है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन व्यक्तिगत सफलता, रोजगार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के विकास की मजबूत नींव है। इसलिए प्रत्येक युवा को तकनीकी शिक्षा अपनाकर अपने कौशल को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के विषय में। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में न्याय, मानवाधिकार, शांति और

कानून के शासन के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि, इस दिन यह अपनाया गया था जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई। यह न्यायालय युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, नरसंहार और आक्रमण जैसी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के मामलों में न्याय दिलाने का कार्य करता है। न्याय और मानवाधिकार की रक्षा को बढ़ावा देता है। ये गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के दोषियों को जवाबदेह देना पड़ता है। विश्व में शांति और न्याय की भावना को मजबूत करता है, साथ ही साथ कानून के शासन के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय, समानता और मानव गरिमा की रक्षा करना प्रत्येक समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी है। न्यायपूर्ण समाज ही शांति और विकास का आधार होते हैं। और अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो है चैंपियन एक दिन में नहीं बनते, विजेता एक दिन में कभी नहीं बनते दोस्तों, वे निरंतर मेहनत और धैर्य से बनते हैं। चैंपियन बनने में समय, अनुशासन और लगातार प्रयास रहते हैं। सच्चे चैंपियन रोज की मेहनत से तैयार होते हैं, एक दिन में कभी नहीं। सफलता एक दिन की नहीं, निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। हर महान चैंपियन के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। जीतने वाले पैदा नहीं होते हैं, वे अपनी मेहनत से बनते हैं। बड़ी सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन, निरंतर अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। हर दिन का एक छोटा प्रयास एक दिन बड़ी सफलता जरूर लाता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। लगातार मेहनत करने से ही साधारण व्यक्ति को असाधारण बनने का मौका मिलता है। सपने देखने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उन्हीं से बनते हैं चैंपियन। चैंपियन बनने में दोस्तों समय तो लगता है, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।

0: जी हाँ दोस्तों, धैर्य और परिश्रम से अपने आप को एक चैंपियन बनाने की दिशा में जरूर आगे करें।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: और आइए कार्यक्रम में आप सुनते हैं गीतों भरी कहानी। शीर्षक है अनमोल मोती, प्रस्तुति शारका शेख की।

बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। भीनी भीनी सी ठंडी हवाओं की महक नैना के मन को एक सुकून दे रही थी। नैना अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और उसे वही लम्हे बार बार याद आते थे। वो दिन भी कितने अजीब थे जब घर में उसके रिश्ते की बात चल रही थी। कई जगह से अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते उसके लिए आते थे, मगर उसके सांवलेपन को देखकर हर कोई उसका रिश्ता ठुकरा देता था। सब लोग उसकी सांवली रंगत के कारण उसे नापसंद करते थे और उसकी छोटी बहन खुशी, जो सुंदरता के साथ साथ गोरी भी थी, पसंद कर लिया करते थे। जबकि दोनों बहनों का नैन नक्श एक जैसा था, मगर नैना के सांवले रंग के कारण हर कोई उससे रिश्ता करने से इनकार कर देता था और खुशी को पसंद कर लिया करते थे। इस बात से नैना बहुत दुखी हो जाया करती थी और ख्यालों में खो जाती थी।

मगर नैना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में लगी रही। राजीव एक अच्छे घराने का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था और वो अपने लिए एक सादा और

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी। शीर्षक था अनमोल मोती, प्रस्तुत कर रही थी शारका शेख। और इसी के साथ कार्यक्रम युववाणी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी तक युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है।

0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

टीजी प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। संध्या 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे कृषि में एआई का उपयोग और बरसात में पशुओं की उचित देखभाल और रोगों से बचाव। साथ ही साथ सुनिएगा ओबी आधारित एक भेंट वार्ता। विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। इस भेंट वार्ता में डॉक्टर शंकर कुमार सिंह से बातचीत करेंगे रूप किशोर शर्मा। संध्या वंदन, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं ब्रज नवकथा जब उठ गयो मेरो हाथ, प्रस्तुत करेंगे संतोष शर्मा।

श्याम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। देशभक्ति परक रचनाएं आप सुन सकते हैं रात्रि 8:20 पर।

एक ही पिन से ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग।

सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं भजन और गजलें। भजन प्रस्तुत करेंगे रामचरण वशिष्ठ, गजलें सुनील गोस्वामी के स्वर में।

रात्रि 11 बजे हिंदी में 11:05 पर होंगी अंग्रेजी समाचार। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने बारे सभी भैया बहनान को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया वर्तमान समय जो है वो बिल्कुल वैज्ञानिक युग है। आज के वर्तमान समय में मोबाइल टीवी और सबसे ज़्यादा तो मोबाइल इतनी सुविधा युक्त है गौरव कि सारी जानकारी आपको अपने घर पर बैठे बैठे जाके माध्यम से मिल जावे हैं। जाई तरह से भैया एआई कृषि में एआई को उपयोग आज हम चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी उपयोग खेती की उत्पादक को बढ़ावे के काजे संसाधन पानी उर्वरक बीज की बर्बादी रोकवे सटीक निर्णय लेवे के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक मौसम का सटीक अनुमान कीटन की पहचान बेहतर फसल प्रबंधन और किसानों की सीधे मदद करे हैं। भैया सटीक खेती के काजे सटीक खेती में जीपीएस यानी ड्रोन आपने देखो होगा कि वो ऊपर उड़ता डोले और वामे कैमरा लगे हुए हों तो ड्रोन और सेंसर के माध्यम से खेत के हर हिस्सा का डेटा इकट्ठा किया जा सके कि हमारे खेत में भैया तुम पे ना जाया जा रहा बड़ा खेत है तो ड्रोन के माध्यम से है जावे। मिट्टी और नमी की जांच सेंसर की मिट्टी की नमी तापमान पोषक तत्वों की जानकारी भी दे में उर्वरक और जल प्रबंधन एआई आधारित प्रणालियां यह तय कर दे में कि किस हिस्से में पानी और उर्वरक की आवश्यकता है और जिसमें लागत में कमी भी आ जावे। कीट और रोगन का पता लग जावे फसलन को नुकसान पहुंचाए वाले कीट और बीमारियों की समय पर पहचान ना होवे के कारण भारी नुकसान होवे लेकिन एआई के माध्यम से हम तुरंत पहचान जावे। किसान फसल के पत्तों फलों की तस्वीर खींचकर अगर एआई आधारित मोबाइल ऐप पर अपलोड करें तो वागो तुरंत बीमारी पहचान करके एआई के माध्यम से कीटनाशक या उपचार की सलाह देवे हैं। सबसे बड़ी समस्या आवे किसान भैया को पूर्व मौसम को पूर्व अनुमान के बारे में तो मौसम अचानक आए वाले बदलाव बेमौसम बारिश सूखा इन सब की जानकारी एआई द्वारा पता लग जावे हैं। तो भैया आपने देखो भी होगो कि इस समय कभी भी कई दिन से आपने अपने मोबाइल में महसूस भी किया होगा कि तुरंत मैसेज आवे कि भाई अभी 3 घंटे में बारिश पड़ेगी 3 घंटे में तूफान आएगी तो उन सब की जानकारी भी हमें एआई के माध्यम से मिल जावे। रोबोट्स का उपयोग खरपतवार हटावे फल सब्जी की कटाई बुवाई जैसे कठिन और समय लगने वाले कार्य में करने में किए जावे हैं तो इस तरह से भैया आप एआई के माध्यम से चैट बॉक्स में जाकर सलाहकार से सलाह भी ले सकें

सलाह भी ले सके हैं। और सलाह लेवे के बाद भैया सलाह लेकर आप अपने खेती में अपना सही कार्य कर सके हैं कि भाई अगर हमारे खेत में कौन सी फसल चाहिए, कौन सी किस समय नाशक कीटनाशक का प्रयोग करना है, किस समय पानी की सुविधा चाहिए, तो इन सब की जानकारी भी हमें AI के माध्यम से मिल जावे हैं। तो भैया ज़रूर लाभ उठाएं, क्योंकि आजकल तो घर घर के बालकन पे मोबाइल होते हैं और आप अपनी खेती के लाभ को दुगना कर सके हैं। ये तो रही आज की चर्चा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले हम आपको आनंद दिखाएंगे बाल किशन भारती के स्वर में जालू गीत को।

0: भैया भैया पाना ले रहे, बालकृष्ण भारती के सर में जालो गीत को मेरे उठे बरह की पीर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दे पाएंगे बरसात के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल। जानकारी दे रहे हैं शंकर कुमार सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।
1: जान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं, साथ ही साथ उनकी खान पान की व्यवस्था, उनकी रहन सहन की व्यवस्था हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें, जिसके लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शंकर कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आज आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में हमारे पशुओं में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां फैलती हैं?
2: जी, बिल्कुल सही सवाल है। अभी विकट गर्मी चल रही थी और सबको बरसात का इंतजार था
1: जी,
2: लेकिन बरसात आते ही खुशियां तो लाता है, साथ में कई बीमारियां हम लोगों के लिए और पशुओं के लिए भी लेकर के आता है। अगर देखा जाए तो बरसात जो है परजीवियों के और जीवाणुओं के या विषाणुओं के फैलने के लिए सबसे सुटेबल इन्वायरमेंट लेके आता है। कहने का मतलब ये है कि जब बरसात आएगा तो मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है
1: जी,
2: और ज़्यादा मॉइस्चर होने के चलते बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैलती हैं।
1: डॉक्टर साहब, बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारी पशुओं में होती हैं वो प्रमुखता कौन कौन सी होती हैं?
2: बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी में नंबर वन पे जो जानलेवा बीमारी है वो गलघोटू में कहते हैं हम लोग। गलघोटू बीमारी भैंसों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या भी आप कह सकते हैं कि थनैला रोग की बीमारी होती है
1: जी।
2: क्योंकि जब नीचे का फर्श गीला रहता है
1: जी,
2: और उस समय बैक्टीरिया जब उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जब सूखता नहीं है, धूप नहीं लगती है, तो बैक्टीरिया ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, और उस कीचड़ में अगर पशु दूध निकालने के बाद बैठता है तो उसके थनों में बैक्टीरिया चले जाते हैं और थनेला होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से जैसे मैं गलघोटू कह रहा था
1: जी,
2: जब बरसात के बाद उमस होती है तो उमस के चलते गले में बैक्टीरिया रहता है, लेकिन जब उमस होती है तो उस समय जानवर जो है स्ट्रेस में आता है, और स्ट्रेस में आते ही उस समय ये बैक्टीरिया जो है अपना विकराल रूप लेता है और जानवर में बीमार कर देता है, और कई जानवरों की जान लेता है जो गलघोटू बीमारी है
1: जी।
2: कई तरह से गले में सूजन आता है किसी में, किसी किसी में तो 2-4 घंटे के अंदर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। तो गलघोटू से बचाव के लिए हम लोग कहते हैं कि बरसात आने से पहले ही गलघोटू का टीकाकरण कर लेना चाहिए।
1: टीकाकरण के लिए हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों में कुछ भ्रांति रहती है कि अगर हम इनको टीका लगवा लेंगे अपने पशु को तो हमारा पशु बीमार हो जाएगा या दूध देना कम कर देगा। इसके लिए आप
2: बिल्कुल सही कहा आपने, उनको जो दिखता है वो समझते हैं
1: जी,
2: लेकिन आप अगर हम लोगों से खुद से जोड़िए तो हमारे छोटे से बच्चा पैदा होता है
1: जी,
2: और उसका हर जरूरी टीकाकरण करते हैं हम लोग। जब टीका लगाते हैं तो उसे बुखार होता है, बच्चा रात भर रोता है
1: जी,
2: हम उस सारी चीज़ों को झेल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी आप टीका लगाएंगे तो शरीर उसके अगेंस्ट में फाइट करती है
1: जी,
2: तो जब शरीर लड़ाई करेगी तो शरीर का तापमान उस दिन बढ़ता है। जैसे हम लोग कोविड की समस्या थी, सबने टीका लगाया, सबको बुखार आता था, तो टीका लगने के बाद जनरली 70-80% लोगों को बुखार आता ही आता है, अगर सही से टीका लगा है तो। जब बुखार आ रहा है इसका मतलब है कि आपका शरीर जो है

0: है उस बैक्टीरिया या उस वायरस से लड़ रहा है
1: जी।
0: आपकी क्षमता जो है वो लड़ने की है, और तभी तो प्रोटेक्शन बनाएगा जब लड़ेगा, तो जब एक्टिवेट होगा। तो जब बुखार रहेगा तो उस दिन एक दो दिन के लिए उसका थोड़ा दूध कम हो जाएगा
1: जी,
0: थोड़ा सा उसका चारा लेना कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किसानों को लगती है कि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन थोड़ा सा दूध कम होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर जानवर जिंदा रहेगा तो सालों तक दूध देता रहेगा। बीमारी में हजारों रुपया खर्च कर देते हैं
1: जी,
0: लेकिन 20 रुपया 25 रुपया वो भी फ्री का भी टीका नहीं लगवाते हैं
1: जी।
0: कुछ लोगों को ये बात का डर रहता है कि मेरा गाभिन पशु है तो बच्चा डाल देगा
1: जी।
0: उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास 10 पशु हैं तो 10 के 10 गाभिन नहीं होते हैं
1: जी।
0: आपके पास उसमें से 4 या 3 पशु गाभिन होगा, बाकी के पशु गाभिन नहीं होंगे। तो अगर आप जो नहीं गाभिन हैं, अगर आपको डर लगता है, तो 7 पशुओं को अगर आपने टीका लगवा लिया तो वो उन तीनों को भी बचा के रखते हैं
1: जी।
0: क्योंकि जब बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो जरूरी नहीं है कि उसी के शरीर के अंदर घुसे जिसमें टीका नहीं लगा है। घर में अगर 10 लोग हैं और 10 में से 2 लोगों को टीका नहीं लगा है, 8 लोगों को लगा है, तो जो बैक्टीरिया उस घर में आएगा पहली बार तो उन 8 में घुसने की भी संभावना ज्यादा है
1: जी।
0: तो उनमें घुसेगा तो जिसको टीका लगा है वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा
1: जी।
0: तो एक तरह से वो अपना तो बचाव कर ही रहा है, उसके साथ में जो लोग हैं या जो पशु अगर जिसको टीका लगा है
1: उनका भी
0: बचाव हो रहा है। तो टीकाकरण एक बहुत अच्छा तरीका है कई बीमारियों से बचाव करने का। साथ ही साथ किसानों को भारी खर्च जो आजकल इलाज में लगता है उससे भी बचाने का। और एक बार जब पशु बीमार हो जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद उसका दूध जाना ही जाना है, वो पूरे दूध पे कभी भी नहीं आता है उस ब्यात में। एटलीस्ट
1: बीमार होने के बाद
0: दूध कम हो जाएगा। अगर वो 10 लीटर की है तो खूब आएगी, तो 8 लीटर पे आएगी, तो लगातार पूरे ब्यात में उनको कम दूध मिलेगा। तो 2 दिन का दूध कम होना या पूरे ब्यात में कम दूध लेना है, ये किसानों को समझना पड़ेगा। और इसको अगर वो ध्यान में रखेंगे तो कोई भी वेटनरी डॉक्टर या टीकाकरण के लिए लोग आते हैं उनको अपने घर पे मना ना करें, टीकाकरण जरूर कराएं। खासकर अपने साइड में देखा जाए तो गलघोंटू और खुरपका मुंहपका एक वायरस से बीमारी होती है, दोनों बीमारियों का टीकाकरण हमेशा होते रहता है। जो पूर्वांचल साइड में है वहाँ पे एक और बीमारी होती है लंगड़ी बुखार जिसे कहते हैं, वो भी जानलेवा होती है, बैक्टीरिया से होती है
1: जी,
0: उसका भी टीका आता है। और तीनों का टीकाकरण एक साथ भी आता है,
1: तीनों बीमारियों का टीकाकरण एक साथ हो
0: सकता है, एक ही वैक्सीन में तीनों रहता है। रक्षा ट्रायोवैक के नाम से वैक्सीन आती है
1: जी।
0: उसका सिर्फ 3 ml अगर आप लगाते हैं, हर 6 महीने पे आप लगा सकते हैं, 3 महीना से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगाया जा सकता है, ये गाभिन पशुओं में भी लगाया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, दूसरा रोग आपने थनैला बताया
0: जी,
1: तो थनैला रोग की पहचान क्या होती है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
0: देखिए, थनैला के कई कारक हैं, जो जैसे बैक्टीरिया ही मैं कह रहा था
1: जी,
0: तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं, हर बैक्टीरिया के लक्षण अलग आते हैं
1: जी।
0: कुछ एनाप्लाज्मा भी, दूसरे भी जीव आप कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, वो भी थनैला करते हैं। लेकिन थनैला को अगर देखा जाए तो 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक को कहते हैं हम लोग सब क्लिनिकल
1: जी।
0: सब क्लिनिकल का मतलब ये होता है कि बाहर से देखने में आपको थन जो है उसका आयन जो है बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन उसकी दूध की मात्रा कम हो जाएगी
1: अंदर से
0: और दूध की जो क्वालिटी होगी वो चेंज हो जाती है।
1: और उसमें जब हम दूध निकालते हैं तो उसमें चिचड़ा टाइप के भी
0: नहीं, चिचड़ा आया तो आपको दिख गया ना
1: जी,
0: तो उसमें चिचड़ा नहीं दिखेगा
1: थनैला में,
0: सब क्लिनिकल थनैला में।
1: अच्छा,
0: उसको हम लोग कहेंगे सब क्लिनिकल थनैला। तो इसको कहा जाता है कि आइसबर्ग, कहने का मतलब ऊपर तो बहुत कम दिख रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा करता है जब उसका दूध खाली एक। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि अगर सब क्लिनिकल थनैला रहेगा तो 1 या 2 क्वार्टर में, या जो 1 या 2 क्वार्टर हैं उसी में खाली दूध कम होगा, चारों के चारों में कम
1: नहीं होगा।
0: तो जो जिसमें इन्फेक्शन रहेगा उसका सिर्फ दूध अगर कम हो रहा है
1: जी,
0: और उसकी उसमें कड़वापन आ रहा है या आपका उसका टेस्ट आपको सही नहीं लग रहा है
1: जी,
0: उसमें कोई छिछड़ा या कोई सूजन या कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको उसको सब क्लिनिकल थनैला मान लेना चाहिए। और वो ज़्यादा खतरनाक है, वो लगातार कई महीनों तक रहेगा उसी तरह से, और दूध वो जानवर जो है कम देता रहेगा। जो क्लिनिकल

0: होता है
1: जी
0: उसमें छिछड़े आने लगते हैं, किसी में सूजन होता है, किसी का एकाएक आप देखेंगे तो जो क्वार्टर इन्फेक्शन है वो पत्थर की तरह हो जाता है, किसी में दूध की जगह सिर्फ पानी आता है, किसी में दूध की जगह खून आना शुरू हो जाता है,
1: जी
0: और खून भी ऐसा आता है जैसे स्राव की तरह आ रहा है, और थन जो है नीला पड़ने लगता है, नीला पड़ने के बाद वो थन कट भी जाता है,
1: जी
0: किसी किसी थनैला में क्या होता है कि नीला पड़ेगा, पूरा सूजन होगा, जानवर खाना पीना छोड़ देगा, डायरिया हो जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, खड़ा नहीं हो पाता है, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कई तरह के थनैला होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें गया है, उसके अनुसार से उसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे।
1: डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम तो है ही है, और बरसात में हमारे पशु खेतों में भी चरने के लिए जाते हैं, और गांव की पोखर होती है, नहर होती है, उसमें भी पानी पीने के लिए जाते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे मौसम में हमारे पशुओं की जो खान पान की व्यवस्था है वो क्या हो?
0: देखिए, बरसाती जो घास होता है ना,
1: जी
0: वो कुछ घास जो हैं वो जानलेवा होते हैं।
1: जी
0: जब बरसात में एकाएक बारिश होती है तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है, और नाइट्रोजन जब ज़्यादा होता है तो तेज़ी के साथ घास बढ़ते हैं,
1: बढ़ती है
0: तो जो घास तेज़ी के साथ बढ़ेगा और ज़्यादा हरा होगा
1: जी
0: और तेज़ी के साथ बड़ा होगा, उसमें पोटासियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जानवर जितना हरा होता है उनको अच्छा लगता है,
1: जी
0: वो अगर कम खाया है, घर पे नहीं खिलाते हैं, एकाएक आपने कभी चरने के लिए नहीं छोड़ा, उसे चरने के लिए छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पोटेशियम वाला घास खा लेता है, और पोटेशियम खाते ही वो मैग्नीशियम की कमी करा देता है शरीर में,
1: जी
0: और मैग्नीशियम की जब कमी होती है तो जानवर पागल जैसा बिहेव करता है, दूसरों पर अटैक करता है, खान खड़ा कर लेता है, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, जानवर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए। आप उसे टच भी करते हैं तो भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं
1: पशु को
0: पशु को, अगर उसने वो वाला घास ज़्यादा खा लिया है जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, या आप अपने पशु को नमक नहीं खिला रहे हैं, जो हम लोग
1: जी
0: सादा वाला नमक खाते हैं वो नहीं खिला रहे हैं और उसने वैसा खा लिया है, तो वो हो सकता है। इसी तरह से कुछ जहरीले घास भी निकलते हैं जिनमें या तो किसी में नाइट्रेट ज़्यादा रहता है, किसी में साइनाइड ज़्यादा रहता है, और उनके चलते उसको ऑक्सीजन लेने की क्षमता चली जाती है उनके शरीर में। एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे उनका गला घोटने जैसा समस्या आता है, उनके शरीर में ऑक्सीजन रहते हुए भी वो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर पाता उनका
1: जी
0: शरीर, और एक तरह से वो फिर शरीर चलता नहीं है और एक आध घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो जानवरों को इमिडिएटली इस तरह के घासों को चरने से मना करना चाहिए और उनमें चरने नहीं जाने देना चाहिए जिस एरिया में ऐसा हो रहा है।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते एक प्रश्न ये हो रहा है कि ऐसी घास की पहचान हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें?
0: नहीं, ऐसी घास जैसे बरू घास है
1: जी
0: या ये जो चरी आती है
1: जी
0: सोरगम वाली, जिसको हम लोग सोरगम कहते हैं, ये अगर पहले से सूखा पड़ा है और उसकी ग्रोथ नहीं हुई है
1: जी
0: और फिर एकाएक बारिश हुई है और बहुत तेजी के साथ वो ग्रो कर रहा है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने जानवरों को खिलाया और जिसने ज़्यादा खाया अगर उसमें सिम्टम आ रहा है, तो उस खेत की घास को आपको नहीं खिलाना है। इसको जांच आप आंख से देख करके नहीं कर सकते हैं, फिर
1: जी
0: उसको अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो उसमें कितना नाइट्रेट है, कितना साइनाइड है इसकी पहचान, या कितना पोटेशियम है इसकी पहचान लैब में की जा सकती है।
1: जी किसान भाइयों, अभी आपने ये जानकारी जानी डॉक्टर शंकर कुमार सिंह बरसात के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल, उनकी खान पान की व्यवस्था और उनमें होने वाली बीमारियों के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया। अभी आप जानकारी ले रहे हैं शंकर कुमार सिंह से, इनसे बातचीत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दिखाएंगे बीना शर्मा और सखियों के स्वर में जय लोक गीत का।

भैया अभी आप बीना शर्मा और सखियों के स्वर में आनंद ले रहे जालो गीत को, कैसे आऊं रे श्याम तेरी ब्रजनगरी। चलते चलते भैया बरसात चौमासे शुरू होने वाले हैं, तो बरसात में तो पशुओं की उचित देखभाल करनी पड़े, जैसे कि हम अपने बालकन की करें हैं। पशु उन्हें खुले में ना बांधे जिससे वो बारिश में भीग कर उन्हें भी

बीमारियों का सामना करना पड़े। खाने पीने में भी पूर्णतः ध्यान दें कि कोई भी इस तरह का खाना या घास जहरीली ना खाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। साथ ही साथ भैया इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहां हम पशु बांधते हैं वहां ढका हुआ भी हो और नीचे सूखा हुआ भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि बरसात का पानी वहां भर रहा है जो हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए उनके खुरपका जैसी परेशानी पैदा कर देता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बरसात में पशुओं की देखभाल रखेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। इन्हीं जानकारी के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सम्पन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मृणालिनी दीक्षित। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे चंदन सिंह की आवाज़ में। कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

श्रोताओं, ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भक्ति रचना फिल्म जय संतोषी माँ से।

0: श्रोताओं, ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज़ में, और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ब्रज साहित्यिक, इस कार्यक्रम में आइए आज आपको सुनवाते हैं ब्रज नवकथा जब उठ गयो मेरो हाथ। प्रस्तुत कर रही हैं संतोष शर्मा।
5: मनसुखा को ब्याह का भयो, सब सुख होते भये मन को सुख ना मिलियो। सबरे संग के सखा जब बम्बा पे गाय भैंसन को पानी पियावे जावते तो एक न एक बात छिड़ जावती मनसुखा की, क्योंकि अपने सबरे सखान में वाही को ब्याह सबते पहले है गयो। औरन को तो कोई अभी दांतों देखवे ना आयो, सो सबरे जे ही कहो करें यार लाला, मनसुखा की तो मौजे ही मौजे, ब्याह का भयो और पट्ठा देख मलूक घरवारी मिली है। या बात पे खुश है वे की बजाय मनसुखा खिसिया जावत हो, क्यों रे तने देख लियो है मेरो सुख, सो बड़ाई झाड़ रहो है लठिया लेके। मनसुखा की आदत पड़ गई हती छोटे पनते ही हर एक बात पे लठिया लेके, कछु कहनो है पर लठिया लेके कहनी है। सो सबरे सखा बोले भाई लाला, न्यो कहले तेरो ब्याह है गयो है सो तो बात आ रही है, नहीं तू जरी पजरी मार गारीन के संग अम्मा की जरी पजरी रोटी ते गुजारो कर तो अब बात कर ले लठिया लेके। सबरे हंस परे, उनकी हंसी ये देख मनसुखा को रिस आ गई, कैसे भट्टी का सा मुंह फार रहे ही करके, नहीं मेरी मोई को पतो है ब्याह का है गयो है, ब्याह है भयो है, घरवारी मिली है के रखवारी आ गई है लठिया लेके। अरे भौजाई का कोई तेरी रखवारी करे सो तू बिना बाते नामोसी दे रहो है, तो तू बता का सुख है मोकू, का देख ले ऐसो तुमने। अच्छा तो देखो ना है तो पतो ना है, हैं? अब तो मनसुखा झर्रा गयो, का पतो है रे बताइयो। ले सुन ले, देख लाला तेरी घरवारी मलूक एक, ओ बनी बनाई पनफती मिले द्वे, तेरी अम्मा की सेवा होए

और तेरे पामू तो मस्कत हो गई है, बड़ा लप लप कर रहा है ये टडुए टीन, और मेरे गरेटुआ मसके सो या ना आएगी ने गो हम में तो, हट एक लंग आ आ चल रे चल। मनसुखा तो अपनी गाय भैंसन को लेके चलो गयो, परंतु घर घर सखान में चर्चा छिड़ गई। क्यों रे भाई मनसुखा ऐसे क्यों खिसियाए गए हो, बात कहा है भैया, जब भगतानी अम्मा आशीष देती हमारी राधे राधे करवे पे तो नौ नौ बांस उलो करते कि हाँ लाला अब तो बहु बटुआसी ही मिलेगी, तो अब का भयो। आज सब गाय भैंसन की सानी पानी ते फुर्सत है के मनसुखा चौपार की ओर गयो, तो देखो कि भगवती अम्मा के द्वार पे चार छह बड़े बूढ़े और छोरा से बैठे, जो लंबी लंबी सौपी और ऊंचे ऊंचे मुड़ासा बांधे, और मुछंदर से बाकी कछु समझ में ना आई, सो हंसी में देके पूछ ले हो, है भगतानी अम्मा आज तो निरे नातेदार इकट्ठे कर लिए हैं, का जिंदे पे ही पुआ करवाओगी का लठिया लेके, हे तेरी कड़ी ये खाऊं ऊंट से, पुआ की तो तोय जल्दी परी है, यहां संग बरबर को भैया कुआरो खड़ो है जा ना सोचेगो। अरे अम्मा समझ गयो समझ गयो, दाऊ के संबंध मारे आए दिखे, ठीक है वो तो बड़ो ही खुश है गो, और खिलखिलावत तो भयो भागो गयो, ओए होए ओए होए। जी बात ना तो अम्मा की समझ में आई और न काऊ और की, पर बात आई गई है गई, दाऊ की सगाई भई और ब्याह है गयो। इतने मनसुखा की अम्मा ने 2.5 सेर घ्यू दे के और बाकू ननसार भेज दयो, मामा को छोरा नौकरी ते लग गयो है ना, सो घर को चलो चला शुद्ध देसी घी मंगवायो। अब तो मामा के घर की खातिरदारी देख मनसुखा को ना तो घर की सुदियाई और ना घरवारी की, मेहमानी की मौज मारते कब 1 महीना बीत गए बात ही की ना पता चली। जब गांव को लौट के आयो तो सखा दाऊ को उदास बैठो पायो, और कह दाऊ मौज में लठिया लेके आए जा, लाला तू बता ननसार में कैसी रही। भाई लाला दाऊ पूछ मते, ऐसी खातिर भाई कि मेरे तो दो हाथ घिया में रह रहे लठिया लेके, पर तू बता तू कैसे उदास बैठो है यार, अभी तो तेरे ब्याह को 2 महीना ही ना है। अरे मनसुखा मैं ना कहूं तेरी और तू ना पूछ मेरी, क्यों ऐसो क्यों, घर भाभी है ना का, अरे चुप रहे कछु भाभी फाभी ना संबंधी भाव ही है रे, ये जिका कह रहे हो दाऊ लठिया लेके। कहूं का यार मेरे 2 महीना भय ना है ब्याह है, और वो तो माँ बेटा नु चक्कर भिन्नी सी बनाए डारो है, और तो पतो है अम्मा ने सबरी उम्र घर ते लेके खेत पे काम करो है, और बाया वो टेक ना लेवन दे। अच्छा भैया हाँ, और एक बात और है जो के कहूं तो कहो ना जाए और चुप हो रहो ना जाए, खा करूं कहा बात है दाऊ, तू मोते कहे मैया ही सौगंध हूं काउते ना कहूंगा लठिया लेके, छोड़े यार हे बताए दे या अब तू चलन दे जा सुसर के नाती बतानो तो तुम पड़ेगो आज ना तो कल, हाँ लठिया लेके। रात भर मनसुखा सोचत रहो दाऊ की बात को लेके, अब सुबेरे सुबेरे नेक धार काढ़वे में देर है गई, सो रोज की तरह मनसुखा की घरवारी को बेई शब्द बड़ी जोर ते आवाज आई। मनसुखा हड़बड़ा के उठा तो वह बोलो हे परमेश्वरी, ने कहा हौले बोल देकर कि गांव में सुनावेगी। अब कही तो मनसुखा ने हौले बोलवे की, पर नोहरे के सामने ते निकरतो भयो दाऊ ने सुन ही ली, बस मूड़ की स्वापी मुंह में दे के जिब भाजो। सांझ को जब सवरे सखा बंबा पे जुरे तो मनसुखा को फिर कुरेदवे की सूझी, सो बोलो ए दाऊ अब तो बताए कल तो तू भाज गयो लठिया लेके। दाऊ को कछु तो रसे आई कछु हंसी और वापे तरसऊ आयो, अब सोचवे की बात है कि लत कदी गैया वारो सुतई पूछ रहे हो है कि गैया ने लात कैसे मारी। भैया मनसुखा तो है ना पतो, अरे तेरे घर की मोए का पतो रहेगी, जब ना पतो तो वैसे ही सुबेरे घरवारी ते होले बोलेवे की कह रहे हो। अब तो मनसुखा को मोह देखवे लायक है गयो, और दाऊ की कान में होले से बोलो यार दाऊ काहे को उस सखान में और बेइज्जती करवावे को उठाड़ो है, जे तो रोज रोज की है तो का मेरी एक दिना की है, जे बीमारी मेरी है, अब तो जैसे बिगड़े पेट में गुड़गुड़ होवे वैसे ही सबरे सखान को पेट गुड़गुड़ावे लग गए।

0: दो भैया को घेर के खड़े है गए सवरे। ए बताए दे, उन्हें को बताए दे रे, हे यार बताए दे के ज्यादा बन रहे हो है, का बात है, बताए रे बताए रे बताए। अब का बता मैं तुम्हें सखाओ, ब्याह का भयो जी को जंजा रहे गो है। भाई मनसुखा बताए दे इनको, और नहीं इनको पेट दुखवे लग जावे गो। हाँ, बताइयो भैया बताइयो। अरे सखाओ, सुबेरे ते संजा जू काम धंधे ते हारे नहीं रे घर को जाओ, और नेकऊ कुछ कछु चूक है उ जावे तो बस रोज ही मारे ते बेजार कर डारती है हमें, और ताऊ पे जी कहती है रोज जे ससुर की नातिन है काए का हुस्त रहियो, और नहीं कहो देना उठ गया हो ना मेरा हाथ तो ढंग ते छरूंगी लठिया लेके। हम बे लालाओ रोज तो मार के धर देवती है, कछु काम ते कछु बातन ते और कछु बैसे। अब इनते कोई पूछे तो सही कि अब कौन सो ऐसो हाथ उठेगा ही न को। अब तो यह बात को सुन सखान की एक संग हंसी छूट गई। मनसुखा और दाऊ दो उनकी बोलती बंद। सो सबरे सखान को चढ़ावे को तो मौका मिल गया। सो सबरे बोले, ओए अब तो यहां ते उठ ले भाग ले भैया, नहीं दो भाभी को हाथ उठाई जावे बरे लटिया लेके। हाँ ले ले ले ले, ओ दाऊ और के बायले, अब हमारी चैंक बन गई के ना बन गई का बेई के काव दिन उठ गयो मेरो हाथ।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे ब्रज नवकथा जब उठ गयो मेरो हाथ, प्रस्तुत कर रही थी संतोष शर्मा। श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, संध्या 7:31 पर हम प्रसारित करेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का फिल्मी गीत तो कीजिए हमें व्हाट्सएप संदेश। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर 94122 25 575।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों समेत 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकीधाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
3: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है। इस डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए

0: रूपये से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल्स पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8,000 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
1: यहाँ पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों, 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
0: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपए की लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस को आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली है। कल पुलिस लाइन में दोनों का मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद एसओजी कार्यालय में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा चौसा आमों की पहली निर्यात खेप को आज लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 1200 किलोग्राम चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजार तक हो गई है।
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया के बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक माई भारत युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं से कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित होकर 2047 तक विकसित भारत के निर्माता बनने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
3: यह सुमन है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही है। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
0: आगामी श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर शुद्ध पेयजल, सुचारू यातायात और ढाबों पर स्वच्छता के साथ प्रमुख शिवालयों और घाटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है, जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हमें क्या व्यवस्थाएं करनी है। जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में अभी सभी थाना क्षेत्रों को, सभी सीओज को अपने अपने एसडीएम के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में इंडियन पैरा जूडो अकादमी द्वारा आयोजित जूडो महाकुंभ स्टेट चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने व्यायाम और खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1100 जूडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कल से मॉनसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की तेज रफ्तार फिर भी नई उम्मीद नई आशाओं आपके संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी। तो देर न करते करते हैं फरमाइशों का और गीतों का सिलसिला शुरू कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ। संदेश प्राप्त हुआ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और बिजेंद्र विश्वकर्मा। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका, गजेंद्र, हेयान चंदन। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा, सरफराज, गुलफराज, बेबी मुस्कान जुड़े हैं एटा उत्तर प्रदेश से। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंचोर दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बटेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल, पूर्वी, रेशमा और राजेश। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना अक्सर, नाजिया इब्राहिम और परिवार के सभी सदस्य। रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, प्रियल और दिव्यांशी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। बर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत, अजहर, अजीम और मुक्तकीम। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा, हैप्पी, अमित रॉय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल रॉय। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूर, गुलडाल और अविराज।

सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य जुड़े हैं अजमेर से। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा सतना एमपी से उमंग आकांक्षा माही मलिक। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम, रूबीना आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, आयुष विवेक, आयुषी श्रीवास। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोता, हुई गीत अभी आपने सुना अदनान सामी की आवाज़ में फिल्म सातिया से। कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

कार्यक्रम में अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है मंडी डबवाली से राजेंद्र अंजू मोहित लकी तानिया नारंग का। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर से नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, अहमदनगर से जुनेद सबिहा मिखाइल और जुनेब मुजाबर, चंडीगढ़ से जुड़े हैं सतीश विमला अनेजा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश करुणा वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम ज्योति ओजस्वी यादव। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है सरगांव छत्तीसगढ़ से नसीम मोहम्मद सलमा रेहान फैजान, अभय कुमार सनातनी शिवानी कुमारी प्रियंका जिया रिया तुसी आयुषी अनिरुद्ध मुन्नी देवी जयप्रकाश बसंत लाल हीरामोती पन्नालाल साहब जुड़े हैं पीहरा बाजार झुमरी तलैया से, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा रेखा देवी अजय कुमार रिमी तनुश्री और परिवार के सभी सदस्य। गांव पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श और सार्थक अलौकिक चंसौलिया, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ प्रकाश बल्लू निषाद इन्हीं के साथ तरुण श्रीनिका श्रीनिजा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम अशफाक आफरीन अल्ताफ निलोफर, चनुला श्रीवास अनीता अंजू योगिता रजन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास बादवानी, संदेश मिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मोताला महाराज से राज गवई राजवीर गवई, सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली के आप सभी श्रोता गजानन नवदीप विश्वदीप अशोक येले, शेरी वडने रकोला से जुड़े हैं अरुणा बलदेव आदित्य दामोदर। गांधीनगर गुजरात से जुड़े हैं सुरेश मंजुला विशाल निशा, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा। कार्यक्रम की अगली फरमाइश नंदा बोर्ड के शाहजी हनुमान बोर्ड के की हिंगोली मारा से आम्बेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े स्वराज। कुम्हार गली श्रीरामपुर से जुड़े हैं अशोक दले सविता अनिकेत ऋषिकेश जीविका सानिका दले, पुनावली पुणे से अजय करिश्मा अविका विशाखा सोनवने, रौनक सेन नानू रविंद्र लकी विकी प्रभा देवी पवन कुमार सेन, संदेश मिला पंडरिया से। दनौरी तेलीवारा उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया आयान बाबू, मलकापुर जिला बुलढाणा मारा से नारायण इंगले मंगला राजकुमार खर्चे और इनके परिवार के सभी सदस्य, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन रोहित और पीयूष कुमार, कलानौर से नरेंद्र किरण नितिन मयंक शर्मा, बीड शहर से नंदकिशोर घटे संगीता साक्षी जयश्री अंजलि करवा बाला साहेब रामनिवास धनंजय पीवी कुल थे, नांदेड़ से जुने प्रकाश से जैन लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन, बुलढाणा महाराज से संतोष एस काले तेजस एस काले और लोकेश, नांदेड़ महाराज के ही आप सभी श्रोता नारायण गायकवाड़ दयानंद ओम कुमार और अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोतागण जुड़े हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय सौभाग्यवती उषा प्रथमेश पाटिल, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े भारती जानवी वैष्णवी और हर्षल, अमरावती महाराज से आप सभी श्रोता सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चनाताई हीरामणि प्रणय और प्रतिभा,

राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता रविराज गौरव, दालदली बाजार से संजय कुमार, संजीत, सर्वजीत, सुधांशु और इनके परिवार के सभी सदस्य, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेरा जहां जुड़े हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू आरजू खुशदिल, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव और जिंदल परिवार के सभी सदस्य, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से जुड़े हैं। बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय और बेबी किट्टू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। नांदुड़ा महाराष्ट्र से के हिवराले, साधना प्रतीक और इनके परिवार के सभी सदस्य, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता गीता, अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, साइसा सोनवने, कोई तेवस्ती, पुनावली से दी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना, संदेश मिला, गणेश, अविका आर्ट, श्रीरामपुर से। बाजार चौक पुलगांव महाराज से अब्दुल कलाम, नाजिमा, अंजुम, अगले संदेश के साथ मोहम्मद रज्जाक, समीम, इमरान, इरफान, संदेश मिला हमें हनुमानगढ़ राजस्थान से। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश गौरव, गरिमा शर्मा जुड़ चुके हैं। मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट जिला बिजनौर से आप सभी श्रोता, मोहम्मद इकबाल फरीदी, बकार फरीदी, सितारा, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदारानी। गिरगांव मारा से गजानन नादरे और मारोत्रा पांचाल, आई सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

जी हाँ श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं। चौकनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज परदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं। रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत, दीपाली कौशिकी और युवान आर के राजा। एक और संदेश हमें मिला है गांव तरन तारण पंजाब से, आप सभी श्रोता जुड़े हैं। अनहद गुरशबद, सुनीता शमी लाल, आकाशदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। एक और फरमाइश हमें मिली है श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति बेबी वियोमिनी, पुरंजय कविता और प्रजापति परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। श्री राधा विंटेज से जुड़े हैं सुनील, प्रमोद और परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है कुशेश्वर कांति गुप्ता, शारदा रंकारानी, रुद्र रिद्धि सिद्धि, कोमल गुप्ता और तन्मय का। राजनगर कांति निकेतन से आप सभी श्रोता जुड़े हैं। कार्यक्रम में एक और संदेश स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, सोनू एंजिल और पपी भाटिया। सुनील पाठक, कमल, दीपिका गव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी और जयपाल यादव। संदेश मिला है जगराव पंजाब से। एक और संदेश लेते हैं, मिला है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुगू सिक्का, इन्हीं के साथ भाविक सिक्का। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, घनुलाल रजक मुरली क्षत्रिय। यवतमाल मारा से कल्पनाताई, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता रियांश और लक्ष्मण राव लोखंडे। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। कार्यक्रम में अगला संदेश दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, बाईपास मेरठ से। बेंगलुरु से जुड़े हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र संस्कृति पौरुष रामगढ़ कैंट से, महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल। डोडी लोहारा से नसीमुल इस्माल और दानिश गुनेरी। जवाहरनगर दुर्ग से जुड़े हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। अमरावती महाराज से प्रवीण हांगोड़े, योगिता प्रियाली, पार्थ और इनके परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, मैंडी सौरभ, साइना निवान शर्मा जुड़ चुके हैं। चकिया बाजार चंदौली से सुंदरलाल जायसवाल, सुमन बबरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब जुड़ा है सुधा शर्मा, काजल, मीरा, सोनाली और अनामिका शर्मा। शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी।

और राजेश कुमार यादव। दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना खान, शकीला अंसारी। डुमराव से वली उल्लाह अंसारी। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमज खत्री, रमेश गौड़, शादाब खत्री। जामा मस्जिद रोड से हाजी इसहाक लोलामनी, मोहम्मद उमर कासमी और अयूब शेरी। अंसारी कॉलोनी दिल्ली से असमा खातून और फातिमा। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीउल हसन, शबनम, नजमा बेगम, सरिता। संदेश मिला गंजुडवारा से। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी प्रकर, कुशल नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ पंकज और तिरुपति साहू। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। शनि चौक खंडवा से उमाराज, कुलदीप, जगदीश और प्रभा रानी। बुल्ढाना मारा से वासुदेव बोधवड़े, अनीता, रमेश राव गाठोड़े, जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी, सहारनपुर से। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं। फूल चिंचोली तालुका पठरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बाबू, बी मुलानी। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री। गांव चौहलदा बागपत से संजय नमन अपार ढींगिया। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। संदेश मिला गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, पूजा, पायल, जगदीश चौहरी। ग्राम फरांसी जिला हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार रूडी। गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, परहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। करणवीर हाउस बुच्चो कैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह चौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर, कुलदीप, एकम दमन और इन्हीं के साथ अभिजोत। जलालाबाद वेस्ट से जुड़े सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल, दिशानी और निमित आहूजा। डैम्पियर नगर से जुड़ी रंजना सैनी। अगले संदेश के साथ कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष चौहान। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

शादुल सह राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसा हाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, अल्ता, फातिमा। नबी हसन अब्बासी, शहनाज नावेद हसन, सुहेल जुड़े हैं मारहरा दरवाजा एटा से।

इसी गीत को सुनना चाहा खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश, हंसिका, वैदेही, मनीष और रेहान ने। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब अलमाज बानो, छोटू पवार, हसनैन पवार, लक्कड़ बाजार खंडवा से।

इसी गीत को सुनना चाहा औरंगाबाद मथुरा से मोहिनी अग्रवाल ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर बीबी अंसारी। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, नजमुल होदा। यहाँ श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत सावंत, सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म आशिक बनाया आपने से। और इसी गीत, इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न करने की मुझे अनुमति दीजिए। अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे आप सभी के साथ, सुनवाएंगे आपको आप ही की पसंद के फिल्मी गीत। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब सारा रखिए ध्यान। दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और साथियों की आवाज़ों में फिल्म सलामी इश्क से। गीत रचना समीर की, संगीत निर्देशन शंकर एहसान लॉय का।

चमेली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत रचना इरशाद कामिल की, संगीत निर्देशन संदेश शांडिले का।

तुलसी कुमार की आवाज़ में आपने सुना कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म लुका छुपी से। इस गीत को लिखा कुणाल वर्मा ने, संगीत तनिष्क बागची का। अभी तक आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं समवेत स्वरों में देशगान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से थोड़ी ही देर में।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कलंक के कुछ गीत। इस क्रम में आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत जोनिता गांधी की आवाज़ में।

गीत को आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह, नीति मोहन और साथियों ने। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत प्रीतम का।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कलंक के कुछ गीत। और आइए चलते चलते सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग। गीत को स्वर दिए हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत

यह श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म कलंक के कुछ गीत। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत निर्देशन प्रीतम का था। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 9:15 पर हम प्रसारित करेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नवरंग। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का फिल्मी गीत, तो कीजिए हमें व्हाट्सएप संदेश। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर 94122-25575। कार्यक्रम का समय याद रखिए रात्रि 9:15। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारम्भ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का

0: उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक

0: प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
2: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है।

0: कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

कार्यक्रम नवरंग सुन रहे सभी श्रुति श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं एक बार फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम नवरंग लेकर। आज ही के दिन यानी शुक्रवार के दिन इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपके भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों के माध्यम से आपकी पसंद पर फिल्मी गीत। तो आइए शुरू करते हैं फरमाइशों का और गीतों का सिलसिला। कार्यक्रम में लेते हैं पहला संदेश। संदेश हमें प्राप्त हुआ है श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति बेबी वियोमिनी और पुरंजय कविता प्रजापति। नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, मलकापुर महाराज से सोपान तायडे नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर।

करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल माहेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन विघ्नेश। सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव और इनके परिवार के सभी सदस्य मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, समसुल कमर राही जुड़े हैं गंजुटवारा से। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हसमुख लाल जिंदल। नागपुर से विट्ठल अनसुईया, पवन राजे जाधव। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी महिमा, नीतू वैदिक वेद। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश। बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या जय हागे। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोकेलाल वर्मा। पटेल नगर मनोट से डॉ रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू, गुड्डू जाजौरिया। शाहूनगर यवतमाल से राहुल सलरा, विशाल चेतन, रोशनी प्रियांशी मनवर। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण दयानंद और ओमकार साई। वैशाली शैलेश गवानकर, श्वेता सुमित ध्वनि गवानकर और इनके समस्त परिवारजन। बहादुरपुरा नागपुर से उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर राही, सरिता प्रिंस और एकांश। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल सितारा, नसरीन रोजी, बिट्टू साजदा, हिना कौसर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र, साहिल, बिट्टा बजाज। अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक, अनुश्री, श्याम कुमार। संदेश मिला सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से जुड़े हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी, प्रकर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन

मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। गीत को स्वर दिए हैं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम अंदाज, शब्द रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं झज्जर हरियाणा से बिटू भाटिया, रीता रजत, मयंक भाटिया।

बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना ये गीत फिल्म अंदाज से, शब्द रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का।

कड़जत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुकना सदफ जूही आमना आसमा इकबाल और इमरान, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल रॉय, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश उषा अमित हैप्पी रॉय, नवाशहर पंजाब से जुड़े हैं गगनदीप धांधी, तृप्ता डॉक्टर प्रियंका प्रशांत प्रियम वामिका और वाणी धांधी। यवतमाल से जयराम सिंगड़कर दिशांत कुमार और अर्पिता, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल जगदीश जौहरी, अनिल कुमार घोड़के वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश, संदेश प्राप्त हुआ छत्रपति संभाजीनगर से, कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर साइना हसन नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम और परिवार के सभी सदस्य, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन, बेंगलुरु से जुड़े भारत भूषण अंजू देवेंद्रु, संस्कृति और पौरुष रामगढ़ से महेंद्र मोदी इन्हीं के साथ कुलदीप कंवल, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार देव डॉली पूजा और राधिका प्रभा देवी इन्हीं के साथ अलकबीर, संदेश के साथ जुड़े हैं मोताला मारा से विजय सुरलकर रत्नमाला विद्या कुमारी, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा विक्रम कड़वासिरा सचिन सतीश योगेश हनुमानगढ़ राजस्थान से, बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, विनोद मायल सीमा लक्षिता याशिका विद्या देवी और मायल परिवार के सभी सदस्य, हनुमंता फाजलिका पंजाब से, हीरावली फाजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा विमला इंदु पार्वती हिमांशु मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम आफरीन अल्ताफ नीलोफर छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से जुड़े हैं, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू और इनके सभी मित्रगण, कुमार गली कोलगांव से पांडु उषा रानी प्रतीक्षा अभिषेक सार्थक प्रतिमेश संतोष और पांडुरंग कुमार, सुधाकर राज यादव डॉक्टर प्रशांत संचित प्रतिमेश प्रणाली सर्वद सानवी हर्षिता देशमुख, संदेश मिला जाफराबाद मराठवाड़ा से, बीट शहर महाराज से नंदकिशोर घटे संगीता साक्षी जैशी मेहत्रे अंजलि करवा बाला साहिब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय टिवलू पीवी कुल थे, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित पीयूष कुमार जुड़ चुके हैं, मंडी डबवाली से राजेंद्र अंजू मोहित लकी तान्या और इनके समस्त परिवारीजन, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष बब्बू डब्बू, गांव चौहलदा बागपत से समंजय ढींगिया नमन और अपार ढींगिया, आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ हाजिरी लगवा रहे हैं तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा, चैतन्य मेगा मस्कीन, शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल रचिता, केशु रिदान खुराना। मामुलवाड़ी महाराज से सोपान ताइडे, विजया जिंगाओ विदर्भ से वसंतरा भोजने, सुनंदा भोजने। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं धनौरी तेलीवारा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद आलिया आयान बाबू, जलालाबाद वैश्य से सुरेश गंगरेजा, पूनम विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला लाडली, रिमझिम और सक्षम चौबे। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रा बेबी चाहत और सादिया। संदेश प्राप्त हुआ गिरिडीह झारखंड से। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, दानिफ आनिश सेफ। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से जुड़े रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद परा

टेलर, पूना राम देवांगन इन्हीं के साथ कृष्णा, आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना, आलिया अंसारी, गंडुडवारा उत्तर प्रदेश के आप सभी श्रोता हैं, कल्याण मुंबई से किशोर सुजाता, प्रतीक हिवराले, कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद अलका मीणा, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप, गुरनूर गुरलाल अविराज, सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा, कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, राजेश, राकेश और इनके समस्त परिवारीजन, एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा सरफराज, कुलपराज, मुस्कान, गंडुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत, सोनम वर्मा, करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, एकम, कुलदीप, दमन इन्हीं के साथ अभिजोत, जामा मस्जिद रोड गोगावा से इसहाक लोलामनी, उमर और अयूब शेरी, मोहम्मद सादिक, अहमद, शाकिर, अलकमा, अल्तमश, रमेश गौड़, शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी, सनावत की श्रोता, नेहरू चौक पैंठड़ के आप सभी श्रोता, डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद सोनल, सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम और सुभाष जाधव, अररिया बिहार से फैसल इमाम, अफजल, अकमल और नफीसा, सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा, माही मलिक, मजनू कटिल्ला से कमल, मधु, सागर बालूजा, सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका और सिरिंजा, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, चंडीगढ़ के श्रोता सतीश, बिमला, अनेजा, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड से आप सभी जुड़े हैं, शिवा, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप, कार्यक्रम में अगला संदेश मिला है गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, पूजा, योगेश, दीपक और परिवार के सभी सदस्य, इन्हीं के साथ सुंदरलाल खटक, कार्यक्रम में अगला संदेश हमें भेजा है लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब अलमास, मोइन छोटू, शंकरलाल गंगराडे, वनीता और हसनैन पवार, कार्यक्रम का अगला संदेश जनकपुरी महोली रोड मथुरा से धीरेन्द्र सारस्वत और दिव्यांशु, राधिका, प्रिया, कनक सारस्वत, आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर ये गीत।

शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता केशु, रिदान खुराना। झुमरी दलिया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी प्रियंका, रिया जिया तुसी, अनिरुद्ध और बसंत लाल।

कुर्बान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में, शब्द समीर के थे, संगीत आनंद मिलिन का। कार्यक्रम नवरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, काल्पी कमरून निशा चबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या आरव और एसके पप्पी। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक मयंत, चेतन नाहटा। मोहाली पंजाब से बब्बल ओम प्रकाश मल्होत्रा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है जॉन डिकैस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस डिकैस्ट्रो का, जनकपुरी सहारनपुर से। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, अयान उस्मान, यासीन और कमर राही श्रोता जुड़े हैं गंडोडवारा से। लातूर से संगीता जैन, सूरज पी आर जैन, नांदेड़ से प्रकाश जैन, बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत, मुरली नीरा।

ज्योति प्रहलाद वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ के श्रोता, संतोष नामदेव सार्थक समर्थ शौर्य नामदेव वगैरह दुर्ग से। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है अजय सोनवने करिश्मा अविका साहिसा सोनवने का, कोयते वस्ती पुनावली से। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार अविका जीविका सानू अर्चना कुमार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल पूजा परिहार। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई प्रीति पिंकी आर्यन और पीहू स्वर्णकार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी तुलसी दिशा और निशा गोस्वामी। गांव उंदी से जनार्दन सिंह सिसोदिया राजेंद्र सिंह सिसोदिया मोहम्मद यासीन नाजमा तौसीफ तैमूर कलीम अंसारी। नई बस्ती गंजुडवारा से दही गांव नादुरा से धोडू भातुरकर मंगला विवेक प्रतीक्षा और समाधान। हाणीखेड़ा सिरसा से आप सभी जुड़े हैं राधेश्याम इंदिरा शर्मा। नूरनगर गंजुडवारा से उजमा शिफा और रिफा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी विवान और वीर सिंह, इन्हीं के साथ इनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

शैलेंद्र का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म गाइड से, संगीत निर्देशन SD बर्मन का। कार्यक्रम नवरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, तन्वी अंकित कांगड़ा। अमरावती महाराज से हर्षा रामेशकर, दिलीप अक्षय और रुद्रा रामेकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। मथुरा से सबा अंसारी, शकील, हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, तुषार, रिंकी और संगीता कंवर। नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार राजमाता नगर बुलढाणा से जुड़े हैं। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, अलकमा खत्री, अल्तमश रमेश गौड़, और शादाब खत्री। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश नामदेव। संदेश मिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन और सुलोचना भगत। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन, सौम्या, अविरल। लेवाई छत्तीसगढ़ से राजा दास मानिकपुरी, गुलाब दास और रानी। सतना MP से उमंग, आकांक्षा, माही मलिक। ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर सिंह। अगला संदेश हमें मिला है जलगांव जंक्शन से दिनेश काली, वंदना काली, आदेश कुमार काली और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। नागपुर महाराज से कमल साहनी, पिंकी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफजाल। मुंदी चौक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। आकोट से जुड़े हैं विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम, पवन, संजीव और इनके परिवार के सभी सदस्य। खड़क सिंह चौकर एडवोकेट जुड़े हैं प्रकाश नगर मथुरा से, इन्हीं के साथ कन्हैया लाल वर्मा। नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नावेद, सुहेल, अनम, रसीद। संदेश भेजा है दरवाजा एटा से। टाउन से जुबैर अली, सबीहा और इनके समस्त परिवारीजन। बिलराम गेट कासगंज से M असलफ कैफी, जैबुनिशा, अक्रम, जाहिद, सद्दाम, सोनी और आबाद। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, मीनाक्षी तिवारी। अगला संदेश हमें मिला है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। ऊपरकोट मोहल्ला चौकनटी बुलंदशहर से सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। ग्राम फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र, प्रमोद और इनके समस्त परिवारीजन। एक और संदेश हमें मिला है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा का। सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, इशरत, वसीम, रूबीना, आरिज, नदीम।

शमीम ममतरानी, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से आसिफ और निगहत परवीन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानुप्रिया देवाश्री, वर्षा कीर्ति भारती, पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित। अगले संदेश में श्रोता जुड़े हैं सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और बेबी जानविका, नादुरा मारा से किशोर हिवराले, के हिवराले, साधना प्रतीक हिवराले, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ सायना और निवान शर्मा, सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। गीत को स्वर दिया है केके ने, फिल्म का नाम हेट स्टोरी 2।

श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। गांव नथाना पंजाब से जसवीर जस्सी, हरजिंदर छिंदा, सीता और गीता।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म हेट स्टोरी 2 से, आवाज केके की थी, गीत रचना तनवीर गाजी की, संगीत राशिद खान का। और इसी गीत इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। अगले शुक्रवार को फिर से हाजिर होंगे आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्म गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं भजन। कलाकार हैं राम शरण वशिष्ठ।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थे रामचरण वशिष्ठ। और आइए अब सुनते हैं सुनील गोस्वामी की आवाज़ में कुछ गज़लें।

अभी तक आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी रामचरण वशिष्ठ के स्वर में भजन और सुनील गोस्वामी के स्वर में गजलें। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सी.आर. व्यास का ख्याल गायन, निबद्ध है राग आभोगी में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सी आर व्यास का ख्याल गायन, और आइए अब सुनते हैं राग बिहाग में ख्याल गायन।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है।

0: और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects including a four-lane greenfield Delhi Amritsar Katra Expressway and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield Southern Ludhiana.